हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे मनीष शर्मा का राग भैरवी में जल तरंग वादन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय

0: विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sane Takayuchi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan Annual Summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council Monitoring Team report of 29 July 2025 mentioning the Resistance Front TRF. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th of November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals.

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अब वक्त हुआ है चिंतन कार्यक्रम का। आज चिंतन में जानते हैं लाला लाजपत राय के विचार के बारे में।
1: पंजाब के मोगा जिले में जन्मे लाला लाजपत राय जी के पिता शिक्षक थे। लाला जी ने वकालत करने के बाद समाज की दशा बदलने के लिए चिंतन आरंभ किया, और इसी क्रम में वो देश को आजाद कराने के लिए प्रयासरत रहने लगे। निडर सत्यनिष्ठ लाला जी स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद पाल के साथ लाला जी की त्रिमूर्ति को बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता था। इसी त्रिमूर्ति ने ही सबसे पहले भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। लाला लाजपत राय जी बहुत सक्रिय थे, इसीलिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। लाला जी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। अंग्रेज सरकार बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद पाल जी के विचारों और उनके द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन से विचलित थी, इसलिए उसने भारतीयों को आंशिक रूप से संतुष्ट करने के लिए साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल भारत भेजा, ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। उस समय चर्चा यह थी कि साइमन कमीशन ये तय करके आया है कि अपनी रिपोर्ट में भारतीयों को देश संभालने में असक्षम बताना है। इस दल में एक भी भारतीय को शामिल ना करना अपमानजनक था, इसलिए देश भर में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जहां साइमन गो बैक के नारों लगाती भीड़ का नेतृत्व करते लाला लाजपत राय जी पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया, जिससे लाला जी और बहुत बड़ी संख्या के अंदर आंदोलनकारी घायल हुए। घायल अवस्था में उसी शाम एक सभा में लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। उन गंभीर चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का देहावसान हो गया, लेकिन उनकी वह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। लाला लाजपत राय जी को देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था, इसलिए उनके बलिदान ने देश के जन सामान्य को आक्रोशित किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय जी पर किए गए जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया, और 17 नवंबर को हुई लाला जी की हत्या के ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी सार्डन को गोली से उड़ा दिया गया। यह ज्ञातव्य है कि सार्डन हत्या के मामले में ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु

0: सुखदेव आदि को फांसी की सजा सुनाई गई। असाधारण प्रतिभा के धनी लाला लाजपत राय जी ने अनेक संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका में भारतीय होम रूल लीग, सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी ही नहीं, उन्होंने भारत के प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की। यह ज्ञातव्य है कि पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में स्थापित किया गया। लाला जी ने अंग्रेजों की मेकाले शिक्षा के समानांतर आर्य समाज के सहयोग से डीएवी स्कूलों की स्थापना भी की। यह उनका दूरदर्शी निर्णय, उनकी राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्ति की सोच का परिणाम था। लाला जी एक प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने द पीपल पत्रिका आरंभ की और द ट्रिब्यून अखबार में भी योगदान दिया। उन्होंने देश और विशेष रूप से पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। 1928 में उनकी पुस्तक दुखी भारत छपी, जो बाद में अनहैप्पी इंडिया के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त आर्य समाज का इतिहास, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया के साथ साथ मेजिनी, गैरिबाल्डी और स्वामी दयानंद जी पर भी उनकी जीवनियां भी प्रकाशित की। भारत को दास्तां की बेड़ियों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के पुण्य स्मरण से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रभक्ति और प्रेरणा का संचार होता है। देश की स्वतंत्रता और संस्कृति के प्रति उनका स्नेह समर्पण सदैव श्रद्धा से स्मरण किया जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, और आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस। आज इसमें सुनते हैं बालकांड 105। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरित मानस, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब हमारा समय कार्यक्रम का हुआ है समाचारों का, तो थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे समाचार। इयम आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकी

0: राजकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीयविधायिकार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचयप्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेष् केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः अष्टाशीत्यधिक अष्टशतोत्तर त्रीणि सहस्र मीटर परिमितेष् ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश पांच प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

0: करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar initiative provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. Election Commission of India ECI has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress AITC regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the Commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritubrata Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit the responses by 5:30 p.m. on Monday. Ministry of Panchayati Raj will organize a national workshop of state Panchayati Raj ministers in New Delhi today to deliberate on the recommendations of the 16th Finance Commission. The workshop will be chaired by Union Minister of Panchayati Raj Rajiv Ranjan Singh Lallan Singh in the presence of Union Minister of State Professor S.P. Singh Baghel. During the workshop, the discussions will focus on the operational guidelines for implementation of the 16th Finance Commission Rural Local Body Grants issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. The annual Sri Amarnath Yatra began this morning from both the Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally forced ice shivling. The yatra will culminate on August 28, coinciding with the festival of Raksha Bandhan.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का। कहते हैं दूसरों के लिए जीने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और दोस्तों कभी आपने अपने अलावा दूसरों के लिए जीकर देखिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। दूसरों के काम आना, मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहना, और अपने दोस्तों के साथ खास तौर पर उनके साथ विश्वास का रिश्ता कायम करना तो बहुत बेहद जरूरी है। इसीलिए दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना, खुश होकर जीना ही जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है।

सुहाने हैं और दो दिल दीवाने हैं। जी हाँ, और रिश्ते की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये खुशी की और धीरे धीरे बढ़ता है और ये खूबसूरत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सभी हालातों में आपके साथ, यानी दुख सुख में हमेशा साथ में हो। और सारी बातें हमारे रिश्तों में चमक ला सकती हैं अगर हम साथ में रहते हों तो, और वो भी मिलजुल कर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग सिमरन कौर के साथ और बात कर रहे हैं हम रिश्तों की, कुछ कुछ मीठे खट्टे और प्यारे प्यारे रिश्तों की। रिश्ता एक खूबसूरत शब्द है, एक ऐसा एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश समर्पित होता है और रिश्ता खुशी से धीरे धीरे बढ़ता है और एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है।

और दोस्तों, जब इस तरह की खुशियों को बटोर कर अपनी और दूसरों के जीवन को हम संवारते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आपका कोई साथ देता है तो उससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती।

और बिना मोल के मिले खुशी कितनी अनमोल होती है, और इसका एहसास बहुत अच्छा लगता है, और परेशानियां हमारी जीवन से कम होती चली जाती हैं।

दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि रिश्तों की हमेशा चमक को संभाल कर रखिए, क्योंकि इस तरह आपके रिश्तों में चमक तो बरकरार रहेगी और विश्वास और प्यार हमेशा रहेगा।

0: और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सिमरन कौर के साथ, और आपसे फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस्ट चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य

से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई।

0: सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के

0: साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं। राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two Prime Ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with a

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हममनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हममनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वाह मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिले मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और उनकी जेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक्वाम मुत्तहदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दोतरफा खुसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इक्तसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तहत अपने मुश्तरका अहद का इआदा किया है। इक्तसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इक्तसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुतालिक मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की अक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली, सलामती और इक्तसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बहरुल काहिल नीज मुख्तलिफ खित्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इक्तसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर, अहम मादनियात

0: अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर हुक्काम ने तिब्बी कैंपों, आराम गाहों, लंगर खानों, पीने के पानी की सहूलियात जैसे जामिया इंतजाम किए हैं। दरियासना यात्रियों का दूसरा काफिला आज सुबह जम्मू से रवाना हो चुका है और तवक्का है कि ये काफिला आज सुपहर वादी पहुंच जाएगा। आकाशवाणी खबरों के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की जानिब से ड्रोन और मिसाइल के बड़े हमलों में 27 अफराद हलाक और दीगर 90 जख्मी हो गए हैं। कीव में खासतौर से रिहायशी इमारतों और शहरी बुनियादी ढांचे को 30 मकामात पर नुकसान की खबर है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन की जानिब से उसके शहरी बुनियादी ढांचे पर तवील सिलसिले के हमलों के जवाब में बुध की रात ये हमले किए गए। थाईलैंड में शुमाल मशरकी मुगदहन सूबे में 11 साल के एक लड़के ने एक पिकअप ट्रक यात्रा के लिए जाने वाले राहिबों के एक ग्रुप से टकरा दिया। इस वाकये में 9 राहिबों की मौत हो गई। 13 दीगर जख्मी राहिबों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मस्कूरा लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। जनूब मगरबी मानसून दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है। ये गुजरात के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के बकिया हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जानिब भी बढ़ रहा है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश और कहीं बहुत ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में मतला अबरारूद रहने के इम्कानात के साथ साथ दिन में हल्की बारिश हो सकती है। ख्वातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड जनूबी अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एनसी ब्रंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यह मैच कैलिफोर्निया के इंगलवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेद्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हालीस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबार ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं।

0: सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का स्वर गंगा। गायन कलाकार हैं अपूर्वा तिवारी और राग है मियां की तोड़ी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थी अपूर्वा तिवारी और राग था मियां की तोड़ी।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर SZ मलिक।
1: गांधी जी दूरदर्शी थे। उन्होंने आज से दशकों पहले भांप लिया था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में भी रेखांकित किया था। भारत का कल्याण उनके गांव में है। अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। गांधी जी का ग्रामीण विकास का मॉडल केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि वह नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक भी था। उन्होंने इसे ग्राम स्वराज का नाम दिया था। गांधी जी का मानना था कि हर गांव को अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होना चाहिए। उनके ग्राम स्वराज का अर्थ था कि गांव अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा और आवास के लिए किसी दूसरों का सहारा न ले, दूसरों पर निर्भर न हो। गांधी जी चाहते थे कि हर गांव अपने आप में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाई हो। सफाई और स्वास्थ्य। गांधी जी के अनुसार विकास की पहली सीढ़ी सफाई है। वे चाहते थे कि गांव की गलियां साफ हों और हर घर में स्वच्छता का वास हो। वहीं उन्होंने पंचायती राज को भी बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि गांव के फैसले गांव के ही लोग लें, न कि दूर बैठे किसी दफ्तर के बाबू। ग्राम स्वराज्य में एक सबसे बड़ी योजना गांधी जी की औद्योगिक प्रगति, मशीनें बनाम मनुष्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि गांधी जी मशीनों के खिलाफ थे, लेकिन यह सच नहीं है। वे केवल उन मशीनों के खिलाफ थे जो इंसान का काम छीनकर उसे बेरोजगार बना देती थी। बापू की मुख्य योजना ग्राम स्वराज और ग्रामीण स्वयं रोजगार हो, इसलिए बापू का कुटीर उद्योग पर अधिक बल था। कुटीर उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी का कहना था कि हमें ढेर सारा उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन चाहिए, यानी कुटीर उद्योग द्वारा ग्रामीणों को स्वयं रोजगार बनाया जा सके। इस योजना के तहत गांधी जी ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए स्वयं एक चरखा बनवाकर खुद ही उसका इस्तेमाल शुरू किया, जिसका प्रभाव ग्रामीणों में जबरदस्त देखने को मिला। चरखा केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह स्वावलंबन का प्रतीक था। वे चाहते थे कि किसान खेती के खाली समय में कताई बुनाई करें ताकि उनकी आय बढ़े। जिस युग में गांधी जी ने कुटीर उद्योग का विचार ग्राम स्वराज्य में रखा, उस समय कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बापू ने चरखा का आविष्कार कर ग्रामीणों को स्वयं रोजगार के लिए जागरूक करने की एक प्रतिभाशाली योजना तैयार की, ताकि किसान को घर बैठे घर में ही आय का स्रोत पैदा हो और किसान ग्रामीण खुशहाल बने व किसी पर आश्रित न रहें। इसका प्रमाण हमें 26 जुलाई 1942 के एक पत्रिका के अंक में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र हो जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे, बल्कि उसमें परस्पर सहयोग की भावना हो। हर गांव की पहली जरूरत होगी अपने खाने के लिए फसलें, आमदनी के लिए कपास का उगाना। कपास जो हमारे भारत का सबसे बेहतरीन खेती मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी ने कपास को तरजीह दी थी और शुरुआत ही

0: कपास से धागा बनाने का काम किया और फिर वो चरखा पर सूत काटने लगे। गांधी जी के ग्रामीण विकास के मुख्य स्तंभ ये तीन बातों पर टिके थे। पहला, आत्मनिर्भर भारत। गांव अपनी जरूरतों का सामान जैसे अनाज, कपड़ा और बुनियादी चीजें खुद पैदा करे। दूसरा, मजदूर का सम्मान। हर व्यक्ति शारीरिक मेहनत करे, जिसे गांधी जी ब्रेड लेबर, रोटी के लिए मेहनत कश, परिश्रमिक कहते थे। और तीसरा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। सत्ता और संसाधनों का केंद्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर जैसे बड़े शहर, महानगर न हों, बल्कि पंचायत हों। ये गांधी जी का मूल मंत्र था। ग्राम स्वराज को अस्तित्व मिलाने के बाद गांधी जी का मानना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रगति खोखली रहेगी। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो असल में हम गांधी जी के इसी ग्राम स्वराज के सपने को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। औद्योगिकीकरण और मशीनों पर गांधी जी के विचार। गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे मशीनवाद के विरोधी थे। वे उस व्यवस्था के खिलाफ थे जहां मशीनें चंद पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती हैं और लाखों मजदूर को सड़कों पर लाकर खड़ा कर देती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 27 अक्टूबर 1924 के नवजीवन अखबार में मिलता है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सभी मशीनों के खिलाफ हैं, तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं मशीनों का नहीं बल्कि मशीनों के प्रति इस पागलपन का विरोधी हूँ। आज जो मशीनीकरण चल रहा है, वो मेहनत की बचत के नाम पर हो रहा है। लोग मजदूर की बचत तब तक करते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के भूखे ना मरने लगे। मैं समय और मेहनत की बचत मानव जाति के एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए चाहता हूँ। उसी बातचीत में उन्होंने आगे ये कहा था, मैं तो उस मशीन का स्वागत करूंगा जो इंसान के काम को आसान बनाए, जैसे सिलाई मशीन, किसानों के लिए क्रेशर मशीन और धान मिल, कपड़ा बुनने के लिए पावर लूम, सूत काटने के लिए जो मशीनों का उपयोग किया गया, वो बेहतरीन आविष्कार हैं। गांधी जी का सीधा सिद्धांत था, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं बल्कि जनता द्वारा उत्पादन होना चाहिए। वे चाहते थे कि उत्पादन के साधन आम लोग के हाथों में हो। गांधी जी ने ग्रामीण विकास और औद्योगिक संतुलन को साधने के लिए दो अभूतपूर्व उपकरण दिए हैं। पहला, खादी व कुटीर उद्योग और दूसरा, न्यासिता का सिद्धांत। गांधी जी के लिए चरखा सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि वह भारत के आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। यंग इंडिया पत्रिका 1921 में उन्होंने लिखा था कि चरखा भारत के गरीबी का अचूक इलाज है। कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे घरेलू उद्योग के जरिए वे गांव के हर हाथ को काम देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर कृषि के साथ साथ ग्रामीण लोग हस्तशिल्प, बुनाई और चर्म शिल्प जैसे कार्यों से जुड़ेंगे, तो शहरों की तरफ पलायन रुक जाएगा। वहीं दूसरी ओर बड़े उद्योगों के संदर्भ में उन्होंने ट्रस्टीशिप यानी न्यायसिता का सिद्धांत दिया था। गांधी जी का कहना था कि अमीर लोग उनकी संपत्ति के मालिक नहीं, बल्कि समाज की ओर से उनके ट्रस्टी या संरक्षक हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा था, आप अपनी जरूरत भर धन का उपयोग करें, लेकिन जो अतिरिक्त धन या संपत्ति है, उसे समाज की धरोहर समझें और उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करें। यह विचार आज के कॉरपोरेट जगत में CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में दिखाई देता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर SZ मलिक।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम

जीजा जी इस फिल्म दा गीत पेश कर रहे सन आशा भोसले। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। छेती ही अगले प्रोग्राम च फिर मिलांगे। हुण हरजीत कौर तुहाडे तों इजाजत चाहुंदी है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईजी ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

जी हाँ दोस्तों, हम यार हैं आपके और आप भी हमसे मिला कीजिए, क्योंकि आपसे मिलने हर रोज़ 10:10 पर चले आते हैं हम बिना रुके बिना थके, आपसे बातें करने के लिए, आपके मेल शामिल करने के लिए, आपकी पसंद के गीतों को खुद भी सुनने के लिए और आपको भी सुनवाने के लिए। फिलहाल आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो कार्यक्रम है वो है आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत बहुत सारा स्वागत है। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कौर। आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस कार्यक्रम से जुड़ना शुरू हो गए हैं। ibradiodelhi@gmail.com इस मेल आईडी का इस्तेमाल करके बाकी जो श्रोता अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे शामिल हो, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे हमारे बाकी सारे श्रोता आ गए हैं।

दोस्तों उम्मीद है आप सबकी सुबह आपकी शाम बेहद खूबसूरत से गुजर रही होगी। आज आपको पता है जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो ये जो ठंडी हवाएं हैं ना, इन झोंकों ने और आसमान में छाए इन बादलों ने दिल को एक अलग ही सुकून दिया। मौसम का मिजाज जैसे जुलाई आते ही बदल सा गया है। दिल कर रहा है बस गुनगुनाते रहें, गाते रहें और इस मौसम को एंजॉय करते रहें। कहते हैं ना, मौसम सिर्फ बदलता नहीं, ये

लेकिन परिवार से अलग होने की बात मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि फैमिली के साथ जो अच्छा लगता है, वो अपनापन जो होता है, वो शायद आप उनसे बिछड़ कर कभी पा ही नहीं सकेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, ये हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। इसके साथ ही हमारे साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अजान और अरबान अब्बासी और इनके साथ ही सारा अब्बासी परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही जुड़े हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो भाई बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ जो मौसम बदला है उसके बाद आपके अंदर का हाल जो है, मौसम का हाल के साथ साथ आपका जो हाल है वो कितना बदला है। इस जुलाई के आते थोड़ी ठंडक तो मिली होगी, क्योंकि मई जून की जो गर्मियाँ हैं उन्होंने तो बहुत तड़पाया है। अब देखते हैं ये जुलाई हमारे किस्मत में क्या लिख कर जाता है। फिलहाल आप अपने शहर का हाल मुझे बताइए, मौसम का हाल मुझे बताइए और मैं आपको सुनवाती हूँ खूबसूरत से गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क।

तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम है आपकी पसंद। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर, और आप जो हमारे पास सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से मेल भेज रहे हैं, अब बारी उनकी है। ये हमारे पास संदेश आया है, नमस्कार जय जौहार करते हुए कहते हैं, हमारे यहाँ भी मौसम बहुत खुशनुमा है, कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मौसम के साथ ही कार्यक्रम। और ये लिखने वाले हैं कोहका भिलाई उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल, साथ में धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित झंगेल, शकुन झंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो कहते हैं, आरती जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी, आपका हार्दिक स्वागत है, एनी सॉन्ग एज यू लाइक, यानी कि कोई भी सॉन्ग जो पसंद मेरा हो वो ये सुन सकते हैं। तो भाई, ये जितने भी सॉन्ग चल रहे हैं ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है और आप सबको भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। लिखने वाले हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजेंद्र सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। इसके साथ ही हमारे पास वो शिकायतें आई हैं कि हमारा मेल क्यों नहीं शामिल हुआ। तो भाई, मैं आप सबसे हमेशा यही कहती हूँ कि कार्यक्रम को ज़रा पूरा सुना कीजिए। कई बार आपके संदेश लिए जा चुके होते हैं लेकिन आप शायद कार्यक्रम पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि ये मोहम्मद सईद अब्बासी जी बोल रहे हैं, इनका संदेश नहीं शामिल हुआ है लेकिन इन्होंने शायद कार्यक्रम को मिस कर दिया है। तो प्लीज़ मिस मत किया कीजिए क्योंकि आपका संदेश पहले ही लिया जा चुका था। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक, अली मुजफ्फर अली, ये हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले जो श्रोता वो हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा वृक्ष खलीफा रेडियो दीवाना, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम इनको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा की।

तो श्रोताओं बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ। ये हमारे पास आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। कहते हैं आरती जी, हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल खुशनुमा हो गया है, गर्मी अभी फिर फिलहाल तो छूमंतर हो गई है और मानसून के आगमन से हम किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि मानसून से हम किसानों की उम्मीद जुड़ी होती है और ईश्वर से प्रार्थना है सभी जगह मानसून बराबर बरसे। जी हाँ, आपकी प्रार्थना ज़रूर कबूल हो, हम भी यही चाहेंगे कि आपकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर सुने। और किसानों के लिए तो सच में वरदान होती है बारिश कभी कभी, और इस मौसम में हो जाए तो फिर आपका तो काम बन जाएगा। तो हम भी यही प्रार्थना करेंगे आपके साथ साथ। आगे जो हमारे पास संदेश आया है वो कहते हैं, मानसून ने दस्तक दे दी है जिसके फुहारों ने माहौल खुशनुमा कर दिया। गर्मी झेल रही उत्तर भारत अब गीला गीला सा हो गया है। हमारे यहाँ बरसात का आगमन ऐसे लगता है जैसे परमात्मा ने सर पर हाथ रख दिया हो, आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन हम सब दुआ करेंगे कि ये बरसातें रहमतों से भरी हो, किसी का नुकसान ना हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। भाई हमारे श्रोता बहुत अच्छे हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। और ये लिखने वाले हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इसके साथ ही हमारे साथ अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। कहते हैं आदरणीय आरती जी, आपको हार्दिक नमस्कार, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। वैसे हमारे राजस्थान में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और थोड़ी बूंदाबांदी हुई है और कुछ राहत भी मिली है, लेकिन आपके गीतों की ठंडक पहुंच रही है। तो भाई आपको ये ठंडक पहुंचती रहे, क्योंकि जहां पर गर्मी है वहां पर ये खूबसूरत गीत अगर ठंडक पहुंचा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ही है।

और कुछ साथी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो संदेश आया है वो है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। कहते हैं कल से हमारे यहाँ रिमझिम बारिश चालू है, मौसम सुहावना हो गया है। भाई हमारे यहाँ दिल्ली में भी कुछ कुछ जगह पर बारिश तो हुई है, अभी सब जगह पर बारिश गिरनी बाकी है, लेकिन हम मौसम तो यहाँ भी सुहावना सा हो रहा है। फिलहाल हमारे पास जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित। साथ ही हमारे पास जो अगले श्रोता संदेश भेज रहे हैं वो हैं, ये है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, और कहते हैं कि हमें भी कोई सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। तो भाई बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सब श्रोता हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, पिताजी शिवाजी कॉलोनी, माफ कीजिएगा, कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही आज मौसम कितना खुशगवार हो गया है, खत्म सभी का इंतजार हो गया है, बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से लगा जैसे आसमां को जमी से प्यार हो गया है। जी हाँ, ऐसा इतना खूबसूरत सा जो ये पंक्तियाँ हैं ये लिखी हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गुणाने में। सीरियसली अगर देखा जाए तो बरसात के तो दिन आ गए हैं और इसीलिए इसकी

हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदा फारजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापासैडा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली लिखते हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। आजकल मुंबई का मौसम बेहाल है, मानसून की बारिश से हर तरफ पानी पानी हो गया है। रब से दुआ करते हैं कि इस बरसात में किसी का भी ज्यादा नुकसान न हो। हम आज 5 दिन से घर में पैक हैं, घबराने वाली बात तो नहीं है, फिर भी डर तो लगता है। वही इन्होंने सही बात कही है, मुंबई में बारिश जिस तरीके से अपना कहर बरपाती है वो हम सब ने देखा है कि कैसे जगह जगह पर जलभराव हो जाते हैं, पानी भर जाता है। वैसे देखा जाए तो देश की हालत ही कुछ ऐसी है, सब जगह पर यही हाल है, लेकिन फिर भी इस सब के बाद भी हम सब बारिश का कितने बेसब्री से इंतजार करते हैं ना, यानी हम तकलीफ भी सहने को तैयार हैं क्योंकि हमें बारिश प्यारी है। फिलहाल अगले जो श्रोता है वो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीर यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। अगले जो श्रोता है वो है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, ये

अनूठिया रोहिणी दिल्ली से कहते हैं, तपती हवाएं सूनी राहें आस लगाए बैठी हैं निगाहें, धरा की छाती में जरा सी प्यास है, आसमां के बादलों पर ही विश्वास है, ओढ़ कर काली घटा कब आओगे तुम, इन सूखी मिट्टी को फिर कब महकाओगे तुम, एक बूंद से खिल उठेगा हर कोना, इस इंतजार का फल है। बहुत सलोना भाई, बहुत ही खूबसूरत कविता है और इसी खूबसूरत कविता के बाद एक खूबसूरत संगीत तो बन

जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत गीतों के साथ आप सबके प्यारे संदेशों का सिलसिला भी जारी है। जैसे हमारे पास ये संदेश आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अगले जो श्रोता हमारे पास अपना संदेश लेकर हाजिर हुए हैं वो हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, इनका संदेश ऑलरेडी लिया जा चुका है, इन्होंने शायद दोबारा अपना संदेश भेजा है। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी यही हैं, यानी कि बार बार आप जो श्रोता हैं ये संदेश भेजते रहते हैं और उसकी वजह से कुछ ज़रूरी संदेश, यानी कि जो लोग पहली बार और एक ही बार संदेश भेजते हैं वो रह जाते हैं, तो कोशिश हमारी रहती है उनको शामिल करने की। और ये हमारे पास जो संदेश आया है वो है संदीप मकड़, मन्नत मकड़, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से। ये कहते हैं कि कोई भी गीत आप सुनवा दीजिए। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया जुड़े हैं। इसके साथ ही भीगे मौसम की भीगी से शुरुआत, भीगी सी याद, भूली हुई बात, वो भीगी सी आंखें, वो भीगा हुआ साथ, मुबारक हो आपको आज की खूबसूरत बरसात, भाई क्या बात है। और ये लिखना है किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने का। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गांव

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 11:10 और पूरी 20 सेकंड। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

0: दोस्तों सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने जसवीर जस्सी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत सुना और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मिथिलेश कुमार सिंह का गायन राग मुल्तानी।

0: राग मुल्तानी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत अभी आपने आनंद लिया मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा गायन का।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्से

ஆங்கன். नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी, आपके साथ राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है 3 जुलाई। आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। यह हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल उपयोग यानी एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण को बचाना है। प्लास्टिक बैग को गलने में करीब 100 से 500 साल तक का समय लगता है, इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि जमीन और समुद्र के जानवर इसे भोजन समझकर खा जाते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। नालियों को जाम करता है, हवा और पानी को जहरीला बनाता है ये प्लास्टिक। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बाजार जाते समय हमेशा कपड़े या जूट के थैले को साथ लेकर जाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को लेने से मना कर दीजिए। और जब भी आप मार्केट जाएं ना, हमेशा घर से कपड़े का या जूट का बैग साथ लेकर निकलें। जैसे पहले होता था, अपने साथ एक थैला लेकर जाते थे, वो लेकर जाइए और अपने पास रखिए। प्लास्टिक लेने से मना कर दीजिए। फल और सब्जियां अलग अलग रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय सूती की छोटी छोटी थैलियां आप बना लीजिए। जो पैकेज दालें और अनाज बाजार में खुला लिया जाता है सामान, उसमें प्लास्टिक की पैकिंग जो होती है वो ना ले, बल्कि खुला सामान लेने को प्रेफरेंस दे। किचन में मसाले, दालें और राशन जो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं ना, वो स्टील या कांच के जार का इस्तेमाल करें। तो बहुत छोटे छोटे उपयोग हैं जिनसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्लास्टिक को नो कह सकते हैं, नो यूज टू प्लास्टिक। जो हम ये स्ट्रॉ लेते हैं ना प्लास्टिक के, उसकी जगह भी पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफर के दौरान जो हम प्लास्टिक की पानी की बोतलें बार बार खरीद लेते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। एक स्टील की बोतल आप अपने साथ रखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी जो दिन भर की आपकी जरूरतें हैं, आपकी आदतें हैं, उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। और आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप बाजार जाते हैं तो क्या प्लास्टिक बैग लेकर जाते हैं, और नहीं जाते तो प्लास्टिक बैग के अलावा कौन सा वो ऑप्शन है जो पर्यावरण के अनुकूल है और आप इस्तेमाल करते हैं, हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि बाजार आप जाते हैं तो किस तरह का बैग आप लेकर जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, प्लास्टिक के ऑप्शन के रूप में आप क्या इस्तेमाल करते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें मेल्स भेजिए, हम आपकी मेल्स को शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम में। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं शमशाद बेगम उषा मंगेशकर की आवाजें ब्लफ मास्टर फिल्म से। और हमने एक प्रश्न कार्यक्रम के शुरू में ही पूछ लिया है कि प्लास्टिक की थैली के बजाय आप बाजार जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं। तो हमें ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं, मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो सबसे पहली ईमेल आई है वो मैं पढ़ देती हूँ। नवीन भाटिया मोती नगर से लिखते हैं कि हम कपड़े का थैला लेकर जाते हैं। और रोहिणी से लिखते हैं, डॉक्टर विनोद, पुनीत रावत, संजय, प्रवीण कुमार और प्रदीप, ये लिखते हैं कि जूट का बैग लेके जाते हैं जो सबसे मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इसमें आप भारी राशन और सब्जियां भी आसानी से ला सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। इस तरह से आप हमें ईमेल भेजते रहिए क्योंकि हम पूछ लिया है हमने आपसे एक प्रश्न। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना, उनके अनुभवों से सीखना, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और सहयोग देकर उनके जीवन को अधिक सुखद और सार्थक बना सकते हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि सपनों को पूरा करने की एक उम्र होती है, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ सपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं पीछे छूट जाते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे सपने पूरे करके, लेकिन वास्तव

वास्तविकता इससे बहुत अलग है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। अनेक वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति के बाद नई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कलाएं सीख रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं। उम्र तो केवल एक नंबर है। यदि मन में उत्साह और आत्मविश्वास हो तो हर सपना साकार किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां जीवन के दूसरे दौर में नई शुरुआत करके सफलता हासिल की है। तो निकालिए उन रुचियों को, उन सपनों को जो कभी यादों के पिटारों में दब गए हैं। पहन लीजिए उन यादों के संदूकों को, निकालिए, एक लिस्ट बनाइए, सपनों को फिर से खोजिए और अब समय है उन्हें पूरा करने का। चाहे शिक्षा प्राप्त करनी हो, कोई आर्ट सीखनी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो, इसमें उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए और परिवार का दायित्व है कि उनका साथ दें, उनको प्रोत्साहित करें।

ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में काला बाजार फिल्म से। और हमें ईमेल्स और आ गई हैं कि लोग प्लास्टिक बैग को लेकर कितने सचेत हैं कि बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करते। अब रश्मि कपूरिया, गौरी शंकर, पुलकित, अक्षरा, प्रीति और मिली वैशाली गाजियाबाद से लिखती हैं कि वो तो डेनिम बैग लेकर जाती हैं। पुराने जीन्स को काट कर घर पर ही बहुत मजबूत और फैशनेबल थैला बनाती हैं और वही बाजार लेके जाती हैं और उनके पतिदेव भी यही लेकर जाते हैं और बच्चों के लिए भी उन्होंने कागज के बैग बना रखे हैं ताकि हल्के सामान को बच्चे ले जा सकें और बाजार से ला सकें। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अगर बाजार से सामान लेने जाते हैं तो अपने कागज के बैग बना रखे।

रखें, यानी जो लिफाफे पहले बना करते थे वो बना रखें। बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि सामान का इस्तेमाल भी हो गया, पुरानी जीन्स को काट कर डेनिम बैग बन गया और आप लेके जाते हैं, खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए ना कितने अच्छे अच्छे सुझाव हमारे हमारे श्रोता दे रहे हैं। तो आप भी भेजिए ऐसा सुझाव कि आप क्या करते हैं, अगर बाजार जाते हैं तो कौन सा बैग लेके जाते हैं, क्योंकि आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे। और हमारा ईमेल आईडी फिर से बता देते हैं, FM Gold।

है। तेजी से बदलती दुनिया में जीवन उनके जो जीवन अनुभव हैं हमें और युवाओं को सही दिशा दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अनुभवों की विरासत हैं हमारे बुजुर्ग।

और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन एफएम गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमने अपना ईमेल आईडी आपको बताया क्योंकि जो बातचीत हमारी आपसे हो रही है वो एक तरफा नहीं रहनी चाहिए, दो तरफा रहनी चाहिए। हम कुछ बोले आप जवाब दीजिए। fmgold@gmail.com पर आप बताइए कि आप जब बाजार जाते हैं तो कैसा बैग लेकर जाते हैं, प्लास्टिक मुक्त अगर देश को करना है, पर्यावरण को अच्छा करना है तो क्या करते हैं। हमें बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। अब एक और मैसेज मिला है बहादुरगढ़ से प्रीति गर्ग, सत्यकाम गर्ग और स्वास्तिका का। ये लिखते हैं कि इन्होंने फल और सब्जियां खरीदने के लिए पारंपरिक बांस की टोकरियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये बांस की टोकरियां जब ये पहाड़ों पर गए थे तो वहां से लेकर आए थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप बांस की टोकरियां लेकर आए। सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि कहीं जाएं तो ऐसा पर्यावरण अनुकूल आइटम लेकर आए घर में ताकि प्लास्टिक बैग की जगह इस्तेमाल किया जा सके। और अब बात करें हैं फिर से अपने बुजुर्गों की। विकास और आधुनिकता बहुत जरूरी है लेकिन अपनी संस्कृति अपने मूल्यों को भूल जाना उचित नहीं है। नई तकनीक और नए विचारों को अपनाने के साथ साथ हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए। यही संतुलन तो समाज को आगे बढ़ाता है। प्रगति और विकास के लिए नए विचारों और तकनीकों को अपनाना आवश्यक है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पुराने मूल्य अनुभव और बुजुर्गों को त्याग दें। पुराना और नया एक दूसरे का पूरक हो सकता है लेकिन इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत होती है। आधुनिक तकनीक हमें सुविधा देती है जबकि पुरानी संस्कृति हमें जीवन जीने की दिशा देती है। यदि हम केवल नए के पीछे भागेंगे तो अपनी

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत फिल्म ओपेरा हाउस से था। और जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जवाब ईमेल द्वारा आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए ना, राजू अग्रवाल, केशव, विनोद, ममता चौधरी जिला हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि हमने वो जमाना भी देखा है कि विवाह शादियों में खाना खाने जाते थे, दुकान में सामान लेने जाते थे, बर्तन घर से लेकर जाते थे। जी हाँ, पहले प्लास्टिक के लिफाफे नहीं थे, साफ सुथरा वातावरण था। आज भी मैं अपनी साइकिल पर कपड़े का बैग हमेशा साथ रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर विचार है। हमें और ईमेल मिली है चरण दास जी की, और ये मेल भी मैं पढ़ देती हूँ। ये लिखिए रामेश्वर राव जी ने लिखी है, शकरपुर से लिखते हैं कि मैं हमेशा अपनी गाड़ी में चाय पीने के लिए एक कांच का ग्लास रखता हूँ ताकि पेपर ग्लास को हम अवॉइड कर सकें। और लिखते हैं कि हमारी फैमिली फंक्शंस के लिए हम सब फैमिली मेंबर्स ने मिलकर 100 ग्लास खरीदे हुए हैं, प्लेट्स खरीदी हुई हैं छोटी और बड़ी, ताकि हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। इस तरह से ईमेल हमें भेजते रहिए। अब देखिए ना, खतों का सिलसिला चला करता था पहले। पहले लोग खत लिखते थे, पहुंचता था, अब तो कितनी जल्दी है, ईमेल आप टाइप करेंगे और हम तक पहुंच जाएगी। फिर क्यों सोच रहे हैं आप?

कच्चे धागे फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब जो पर्यावरण की बातें चल ही रही हैं, तो एक ईमेल और हमें मिल गया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम लेकर जाते हैं कॉटन का बैग। देखिए कितने अच्छे अच्छे सलाह मशवरे और सुझाव हमें मिल रहे हैं और हमारे जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं कि आगे पर्यावरण को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। अब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बुजुर्गों से पूछेंगे ना तो पहले यही होता था, प्लास्टिक के बैग्स नहीं होते थे, वो प्लास्टिक के बैग्स की बजाय एक कॉटन का, या जैसे घर में पुराने कपड़े टी शर्ट्स बच जाती थी उन टी शर्ट्स को भी काट कर सिया जाता था, सील लिया जाता था, एक बैग बनाया जाता था। हर घर में ऐसा ही होता था। जी हाँ बिल्कुल, और आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि प्लास्टिक की थैलियां नहीं हुआ करती थी, एक थैला बनाया जाता था पुराने कपड़ों से, नए कपड़ों से अगर सुंदर सुंदर हैं वो भी बनाए जाते थे, सिलाई मशीन पे उनको सील करके बैग या थैला बना लेते थे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, और बाजार जा रहे हैं तो लेकर जाते थे। अब यही तो पुरानी परंपराएं हैं जो आगे ले जाने का कार्य करते हैं हमारे बुजुर्ग। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार और लोक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के माध्यम से ही तो आगे बढ़ती हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान कितनी समृद्ध है। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को समझती भी है और अपनाती भी है। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और लोकाचार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में हमारे बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे त्योहार, रीति रिवाज, लोक कथाएं, पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। आधुनिकता के दौर में जहां परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक उन्हें जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। उनकी बदौलत हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है, समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और वरिष्ठ नागरिक न केवल परंपराओं के संरक्षक हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सेतु का कार्य भी करते हैं हमारे बुजुर्ग।

ये गीत आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म से, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी आवाजें। अब हमें ईमेल प्राप्त हुई है रेखा देवी, निर्मला देवी, प्रीति चौधरी की, हिसार हरियाणा से। वो लिखते हैं कि हम प्लास्टिक बैग का जो लिफाफा है वो फट जाता है, इसलिए हम कपड़े का बैग जरूर साथ रखते हैं ताकि सामान बिखर नहीं पाए, और बाजार में लोग आप पर हंसे ना, इसलिए आपको जरूरत है कि आप कपड़े का बैग ही साथ रखें। जी हाँ, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कपड़े का बैग। और एक मेल हमें, एक मैसेज और मिला है हमें फरीदाबाद से नरवीर, त्रिलोक और मोहित का, ये भी यही लिखते हैं कि आप कपड़े का बैग लेके जाएं, इन्हें मोड़कर जेब या गाड़ी में रखना आसान होता है और गंदा होने पर इन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, यानी हमें बहुत सारे सुझाव और आइडियाज मिल रहे हैं आज मेल पर कि पर्यावरण अनुकूल हम क्या काम कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को हम नो कह दें, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और हमें पर्यावरण को खुश रखना है। पर्यावरण खुश रहेगा तभी तो हम भी खुश रहेंगे।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और ये गीत हमने लिया था पारस मणि फिल्म से, लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की थी आवाजें। बातें चल रही थी बुजुर्गों की, अब बुजुर्गों की बात चली है। और देखिए, बुजुर्गों की बात है हमारे घर में, जो हमारे बड़े रहते हैं, दादी नानी हैं, उनके किस्से कहानियां कैसे भूले जा सकते हैं। दादी नानी की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी, साहस और संस्कारों की सीख मिलती है। ये कहानियां बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ती हैं। नानी माँ की कहानियां, दादी माँ की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक अनमोल खजाना है। दादी नानी की ये जो कहानियां होती हैं ना, इससे बच्चों का सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि बच्चों को जीवन के गहरे नैतिक मूल्य और समझदारी और साहस भी मिलता है। ये कहानियां हमें सही गलत का फर्क सिखाती हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक मजबूत पुल का काम करती हैं। जब हम दादी या नानी या नाना या दादा की गोद में सिर रखकर इन कहानियों को सुनते हैं, तो हम अपने परिवार और संस्कारों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये जो दादी पोते का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, बेहद गहरा भावनात्मक और प्यार से भरा होता है। ये कहानियां हमें परंपराओं से जोड़ती हैं। जो दादी नानी दादा नाना प्यार करते हैं, वो बिना किसी शर्त के ढेर सारा प्यार होता है। एक मजबूत भावनात्मक आधार होता है जिंदगी जीने का। कई बार जो कई परिवार जो होते हैं, उसमें नानी दादी बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बड़ी मार्गदर्शक होती हैं, जिनसे बच्चे खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं।

ये गीत आप सुन रहे हैं घर घर की कहानी फिल्म से शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजें। और देखिए कार्यक्रम का समय अब सिमट गया है, इसलिए कार्यक्रम घर आंगन संपन्न करने की राधा पाठक को दे इजाजत। आप सुनते रहिए ये गीत।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में

0: बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Mr. Modi will also lay the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project. The Prime Minister will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, the Prime Minister will visit Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France

दोस्तों, ये गाना फिल्म के सबसे बड़े हिट गीतों में शामिल है। साथियों, इस गीत को अपनी आवाज दी थी अलका याग्निक और उदित नारायण ने। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज की महफिल सजी है 1995 की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म राजा के नाम। दोस्तों, इस फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी, बल्कि इसके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म राजा का यह खूबसूरत सफर।

जी हाँ दोस्तों, राजा फिल्म 1995 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण इंद्र कुमार ने किया था। दोस्तों, इसमें माधुरी दीक्षित और संजय कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि परेश रावल, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, रीता भादुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। साथियों, यह फिल्म 2 जून

दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो वो इस प्रकार थी कि राजा एक साधारण और ईमानदार युवक है। उसकी मुलाकात होती है अमीर परिवार की लड़की मधु से। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं लेकिन मधु का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ होता है। दोस्तों दोनों शादी तो कर लेते हैं लेकिन इसके बाद शुरू होता है संघर्ष, गलतफहमियों और साजिशों का सिलसिला। लेकिन राजा अपने प्यार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है और अंत में हम सभी जानते हैं कि सच्चे प्रेम की जीत होती है।

साथियों, फिल्म की शूटिंग भारत के कई खूबसूरत स्थानों पर की गई थी। फिल्म के रोमांस और संगीत ने इसे पारिवारिक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। दोस्तों, राजा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और सच्चे प्यार की कहानी है। इसकी मधुर धुनें, शानदार अभिनय और भावनात्मक कहानी आज भी इसे यादगार बनाती है।

साथियों, इसी गीत के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और सुनहरी फिल्म की कहानी, उसके यादगार गीतों और अनसुने किस्सों के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दिनाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक भाईवाली निरंतर रहनयोग विकास नो के वधाउण लई चंगी तरह तैयार है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद तहत भूचाल प्रभावित वेनेजुएला लई अपनी मानवतावादी सहायता वधा दित्ती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम ते बालटा दोवां रूटा तो शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ते गृहमंत्री ने शुभकामनावां दित्तियां ने। भारत की विलखण पछाण अथॉरिटी UIDAI ने 1 जुलाई तो 6 महीनों की म्याद लई आधार ऐप राही सिद्धियां आधार विच मुफ्त ईमेल अपडेट नूं समर्थ बनाया है। चंडीगढ़ सहित मौसम विभाग ने 5 से 8 जून तक पंजाब ते हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों के नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह दा येलो अलर्ट जारी किया है। हुण खबरां विस्तार नाल। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक भाईवाली निरंतर रहनयोग लचकीले ते नवीनता दी अगवाई वाले विकास दे अगले पड़ा नूं अगे वधाउण लई चंगी तरह तैयार है। पैरिस विच भारत फ्रांस व्यापार कोलमेज नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि तकनीकी तरक्की, सप्लाई लड़ी वनसवंता, ऊर्जा तब्दीली ते भू सियासी गतिविधियां कारण विश्व आर्थिकता तेजी नाल तब्दीली विचों गुजर रही है। खजाना मंत्री ने फ्रांसीसी कारोबारां ते निवेशकां नूं विकसित भारत 2047 वल भारत दी यात्रा विच भाईवाली करन दा सद्दा दित्ता। उन्हां सांझी खुशहाली प्राप्त करन लई भारत फ्रांस रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करन लई वी कहा। उन्हें कहा कि भारत ते फ्रांस आलमी AI इकोसिस्टम नूं नुहार देण विच भरोसेयोग भाईवाल ने। ए भाईवाली भरोसेयोग AI डिजिटल बुनियादी ढांचे अते अगली पीढ़ी दीआं तकनालोजीआं विच नवे मौके प्रदान करदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दे जापानी हमरुतबा सनाए ताकेशी ने पाकिस्तान तो सरहद पार दहशतगर्दी समेत सारी रूपां ते प्रगटाव्यां विच दहशतगर्दी अते हिंसक कट्टड़वाद दी स्पष्ट अते सख्त निखेधी कीती है। 16वें भारत जापान सालाना सिखर सम्मेलन दे सांझे बयान विच कहा गया कि दोवां नेतावां ने पिछले साल 22 अप्रैल नूं जम्मू कश्मीर दे पहलगाम विच होए दहशतगर्द हमले दी सख्त शब्दां विच निखेधी कीती। दोवां नेतावां ने 29

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद को एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदऊ किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। उन्होंने भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत जलजले से मुतासर वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। यहाँ तकरीबन 2600 अफराद हलाक हो गए और हजारों अब भी लापता हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के इलाकों में कल तक के लिए शदीद और बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा आलमी कप में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। अकीदतमंदों के नाम एक खत में जनाब मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिले फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी और सारी रिवायत की अक्कासी होती है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल दोनों रियासतों से शुरू हुई। उम्मीद है कि पूरे भारत से लाखों अकीदतमंद इस 57 रोजा यात्रा के दौरान श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।

0: यह यात्रा 28 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। यात्रा का पहला जत्था श्री अमरनाथ गुफा के लिए ननवान और बालथल के दोनों बुनियादी कैंपों से आज सुबह रवाना हुआ। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ हजारों यात्रियों ने आज सुबह अपनी

यात्रा शुरू की, जिसके दौरान ये लोग 3,880 मीटर ऊंची गुफा के लिए मुश्किल गुजार रास्तों से होकर जाएंगे। अनंतनाग जिले में ननवान पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता है और गांदरबल जिले में बालतल से 14 किलोमीटर का रास्ता है। दोनों ही रास्तों पर हुक्काम ने भरपूर सहूलियात मुहैया की हैं, जिनमें मेडिकल कैंप, कयाम की जगहें, लंगर, पीने के पानी और मौसम पर बरवक्त नजर रखने के इंतजाम शामिल हैं। हिफाजती इंतजाम भी भरपूर तरीके से किए गए ताकि यात्रा को महफूज बनाया जा सके। इसी दौरान यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। उम्मीद है कि यह आज बाद दोपहर वादी पहुंच जाएगा। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान।

उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इस स्कीम का मकसद हवाबाजी के शोबे की क्यादत में तरक्की के अगले मरहले को तेज करना है। ये प्रोजेक्ट जामे और पायदार फजाई रबते को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इकदाम पर मुश्तमिल है। वजीर आजम राजस्थान के बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल, शहरी नकल व हमल, रेलवे, सड़कों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील समेत कई शोबों से वाबस्ता है। बाद में शाम को वजीर आजम गुजरात जाएंगे, जहां वो सनंद में बाहर से मंगाए गए CG सेमी कंडक्टर्स के कल पुर्जों की तरतीब और तजर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमी

0: स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत और फ्रांस आलमी मसनूई जहानत इको निज़ाम की तश्कील में एक दूसरे के काबिल एतमाद शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि यह शराकतदारी काबिल एतमाद मसनूई जहानत, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अगले सिलसिले की जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में नई सरमायाकारी और तआवुन के वसी मौके फराहम करती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और फ्रांस के दरमियान दोतरफा तजारत दोगुना हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत में तकरीबन 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कोलकाता में न्यू टाउन कन्वेंशन मरकज में किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दीगर रियासती कानून साज असेंबलियों के अरकान और बहुत सी दीगर शख्सियतें इस तकरीब में शिरकत कर रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिताब में कहा कि कानून साज अरकान के लिए कानून साजी के अमल और निज़ाम की मुकम्मल जानकारी के साथ साथ ये लाजमी है कि वो नई टेक्नोलॉजीज, इख्तिरा मसनूई जहानत AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करें।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: भारत ने ऑपरेशन एमस्तात के तहत जलजले से मुतासरा वेनेजुएला के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद तेज कर दी है। वजारत खजाना ने तिब्बी राहत की मौजूदा कोशिशों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि आर्मी फील्ड अस्पताल वेनेजुएला में मुतासरा लोगों को तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेलसी रेड्रिग्स ने मुल्क में 7 रोज के कौमी शोक का ऐलान किया। वेनेजुएला में 24 जून को आए शदीद जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर तकरीबन 2600 हो गई है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। नौजवानों के उमूर के महकमे ने आज नई दिल्ली में माई भारत की सनती तंजीमों के कॉन्क्लेव का इनेकाद किया। इस कॉन्क्लेव में SOCHM, फिक्की, CAIT और CII समेत सरकर्दा सनती तंजीमों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सनती इदारों को माई भारत के निज़ाम से मुतारिफ कराना और सनती अंजुमनों, कॉरपोरेट इदारों और सरकारी सेक्टर की कंपनियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए मदु करना है। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में कल तक के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। ये पेशगोई भी की गई है कि छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गुजरात गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। स्विट्जरलैंड अल्जीरिया को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये मैच कनाडा के वैंकूवर में खेला गया। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रिवायत और सकाफती इत्तेहाद में एक लाफानी बाब करार दिया है। उन्होंने अकीदतमंदों को मुबारकबाद दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के ताजिरों और सरमायाकारों को मदु किया है कि वो विकसित भारत 2047 की जानिब भारत के सफर में शरीक हों। मगरबी बंगाल में कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए एक 2 रोजा तारुफी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिक

0: वालों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम,

0: अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश

0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त राखी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम सुरों की जादुई दुनिया में उस फनकार की बात करेंगे जिसकी आवाज़ दिल के तारों को छू लेती है और रूह को खुश कर देती है। इनके गीतों में जीवन के हर रंग, हर भावना और हर ख्वाब दिखाई देते हैं। इनके मधुर गानों की गूंज मन को एक अलग ही सुकून देती है। इनके खून में ही गीत संगीत बसा हुआ है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अमित कुमार जी की। पिता किशोर कुमार की तरह ही अमित कुमार का नाम भी भारतीय संगीत जगत में एक खास स्थान रखता है। अपनी मधुर आवाज और शानदार गानों के माध्यम से इन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया है। इनके जीवन और करियर की यात्रा बेहद इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। अमित कुमार जी के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं इनके फिल्म का एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जो आज के हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार। और अभी आप सुन रहे थे इन्हीं की फिल्म से ये गीत, ये फिल्म थी लवर्स। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आज जो हमारे ये कलाकार हैं अमित कुमार जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 3 जुलाई 1952 को कोलकाता में किशोर कुमार और रूमा गुहा के घर अमित कुमार जी का जन्म हुआ। पिता की तरह अमित कुमार जी की माँ भी एक बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस थी, यानी अमित कुमार को गायकी विरासत में मिली थी। अपने पिता की तरह अमित ने भी कम उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और वो कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह में गाते थे। बाद में पिता किशोर कुमार इन्हें मुंबई ले आए। किशोर कुमार ने अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई दो फिल्में अमित कुमार को एज ए बाल कलाकार के रूप में लिया था। पहली फिल्म थी दूर गगन के छाँव में और दूसरी फिल्म दूर का राही के लिए। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने इसमें काम किया। अमित कुमार ने मैं एक पंछी मतवाला गाया, इसमें गाना गाया। इस तरह से अमित कुमार जी के करियर की शुरुआत हुई। आगे आपको इनके और भी सिंगिंग स्टोरीज सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप सुनिए इनके फिल्म तेरी कसम का ये हिट गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार जी। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं 1970 का जो दशक था वो अमित कुमार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल इन्होंने बॉक्स ऑफिस को कई हिट गाने दिए। 1976 की फिल्म बालिका वधु में इन्होंने संगीतकार आरडी बर्मन का गीत बड़े अच्छे लगते हैं गाया, जिसके बाद इन्हें नेशनल फेम मिला। अमित कुमार ने आरडी बर्मन के साथ करीब 170 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए। 1978 में इन्होंने फिल्म कस्मे वादे में आती रहेंगी बहारे गाया। इस गाने में पिता पुत्र की जोड़ी हिट रही। इसके बाद इन्होंने फिल्म चोर के घर, चोर ढोंगी, आंधी, आपके दीवाने, खट्टा मीठा, गोलमाल

माल और बातों बातों में जैसी फिल्मों में गाना गाया। उस समय के दिग्गज सिंगर्स के बीच अमित कुमार ने अपनी आवाज से एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए आपको सुनाते हैं इनकी फिल्म बातों बातों में का ये मेलोडियस सॉन्ग।

0: ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, लेकिन आपने बहुत कुछ कहा है और आपके ढेर सारे मेल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम आपका मेल पढ़ेंगे इस सेगमेंट के बाद। श्रोताओं, 70 के दशक के बाद 1980 का दशक जो आया था, जहां फिर अमित कुमार ने अपनी सिंगिंग द्वारा कई हिट गाने दिए। फिल्म कुर्बानी के लिए लैला ओ लैला गाना गाया, जो उस समय बहुत फेमस हुआ। इस दौर में अमित कुमार ने लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ गाना गाया। 1981 की फिल्म लव स्टोरी के सभी गाने अमित कुमार ने गाए और लता मंगेशकर के साथ जो गीत था याद आ रही है तेरी याद आ रही है के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता। इस सफलता के बाद अमित कुमार ने राजेश खन्ना की फिल्म 50-50 और आखिर क्यों के लिए गाना गाए। अमित कुमार ने 1980 के दशक में लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स और एक्टर्स के लिए गाना गाया। इस दौर में वो अपने पिता किशोर कुमार के बाद हिंदी फिल्मों में दूसरे सबसे पसंदीदा मेल बैक सिंगर थे। इतना ही नहीं, 1980 के दशक में के अंत में अमित कुमार ने दूरदर्शन के टीवी सीरियल जैसे चुनौती और कैंपस में भी अपनी आवाज़ दी। आगे आपको अमित कुमार जी के बारे में और भी रोचक जानकारियां

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं अमित कुमार जी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, हम भी आपको याद कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे होंगे अपने मेल्स का कि हम पढ़ें उसको। तो देखिए, मेल्स मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ये हैं संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर, और भारत कमल, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। और ये हैं मारहरा दरवाज़ा एटा नबी हसन नब्बासी जी। और आगे चलते हैं ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुलदार और विराज सिंह। और ये हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी। और ये लिखते हैं कि नमस्कार राखी जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हुए हैं। एमएलबी रेडियो ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव और एसपी। और ये है रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी। वीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला। और ये हैं अनिल मोहन जी, और ये लिखते हैं शानदार प्रस्तुति पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से शोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरुमंत और गौर मनु। और ये हैं नलवेर महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला, विशाल, नारायण सोपान, आशीष और आशीष जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, एक और मेल लेते हैं। ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाद्रा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना जी का। तो हम बात कर रहे थे अमित कुमार जी की। श्रोताओं, अमित कुमार जी 90 के दशक में भी बहुत सारे गानों में अपनी आवाज दी। 1990 में आई फिल्म बागी का गाना कैसा लगता है जबरदस्त हिट हुआ। फिर 1991 में आई फिल्म हम का गाना सनम मेरे सनम भी काफी लोकप्रिय हुआ। 90 के दशक में अमित कुमार ने फिल्म घायल, सैलाब, पुलिस पब्लिक, आज का अर्जुन, 100 डेज जैसी फिल्मों के गानों में अपनी शानदार आवाज दी। अमित कुमार ने 90 के दशक के करीब सभी म्यूजिक डायरेक्टर जैसे जतिन ललित और अनु मलिक जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया। 1994 में आरडी बर्मन की मृत्यु के बाद अमित कुमार ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। दरअसल आरडी बर्मन जी के साथ उनका बहुत ही करीबी दिल का रिश्ता था, जिसके बाद उन्होंने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। इस दौरान अमित कुमार ने संगीत एल्बम भी बनाए। अमित कुमार ने सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। अपने पिता किशोर कुमार के डायरेक्शन में बनी

बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया। अमित कुमार ने फिल्म दूर गगन की छाव में, दूर कराही, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम जिंदगी और ममता की छाव जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। फिर 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अमित कुमार ने डायरेक्शन का काम संभाला और एक्टिंग को अलविदा कह दिया। कुल मिलाकर अमित कुमार ने अपने करियर को के हर फील्ड में काम किया। अमित कुमार जी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ रीमा गांगुली एक क्लासिकल सिंगर हैं और आज भी रियलिटी और अमित कुमार जी आज भी रियलिटी शो के जरिए अपनी संगीत के फील्ड्स में एक्टिव हैं। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर, सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत अमित कुमार की आवाज़ में।

हमारे कुछ श्रोताओं के और भी मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता का, और ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन जी का। आपने पहले भी हमें मेल किया है, और ये हैं हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, और ये हैं हमारे साथ साहा जी बोखरे, श्रीमती नंदा हनुमान, उत्तम जी हिंगोली महा

श्रोताओं, इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे हम फिर हाजिर होंगे आपके मेलोडी मैटनीज के कार्यक्रम के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भर

0: नमस्कार।
1: और आज मैं आपके साथ हूँ शिल्पा गोस्वामी,
0: और हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत आज से लगभग 113 साल पहले 3 मई 1913 को हुई थी। तब से लेकर आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसा सफर तय किया जिसने उसे दुनिया में के सबसे बड़े प्रभावशाली फिल्म उद्योगों में शामिल कर दिया। आज बॉलीवुड की चमक सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में इसके चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन इस लंबे सफर में एक दौर ऐसा भी आया जिसे भारतीय सिनेमा का गोल्डन इरा कहा जाता है। ये वो समय था जब देश ने नई नई आजादी का स्वाद चखा था, और सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था बल्कि समाज का आईना हुआ करता था। उस दौर की फिल्मों में देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों की झलक साफ दिखाई देती थी। यही वजह है कि उस समय की फिल्में और उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से बसे हुए हैं। पिछले कई दशकों के भारतीय सिनेमा ने हमें अनगिनत यादगार कलाकार दिए। कुछ आज भी हमारे बीच हैं और कुछ अपनी कला की अमिट छाप छोड़कर यादों का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आज मैटिनी मेलोडीज में हम सिर्फ उन चेहरों की बात नहीं करेंगे जिन्हें आप पर्दे पर देखा करते हैं, बल्कि उन अनदेखे और अनसुने सीक्रेट्स की बात करेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस सुनहरे दौर का को अमर कर दिया। शिल्पा, अब ये बताओ कि वो क्या था सीक्रेट?
1: तो दोस्तों, सफर के पहले पड़ाव पर हमारी पहली सीक्रेट फाइल खुलती है। राखी जी, जैसा कि एक ऐसी सच्चाई के साथ जो आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है, आज अगर कोई नया गाना आता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसे किसने गाया है। जी राखी जी, सही है ना?
0: बिल्कुल।
1: पर क्या आपको पता है कि गोल्डन एरा की शुरुआत में, यानी 1940 के दशक में आखिरी सालों तक प्लेबैक सिंगर्स का नाम फिल्मों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर छपता ही नहीं था?
0: बिल्कुल सही बात। और वो शुरुआत हुई थी हमारी कि,
1: जैसा कि आप जो बताना चाह रही हैं हमारे श्रोताओं को, उन्हें कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता था राखी जी, क्योंकि रिकॉर्ड्स पर सिंगर के नाम की जगह उस मूवी के कैरेक्टर का नाम लिख दिया जाता था।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और सोचो, आप गाना सुन रहे हैं पर आपको पता ही नहीं कि इसे गाया किसने है। फिर साल 1949 में एक फिल्म आई, महल। पता है आपको राखी जी?
0: बिल्कुल। और तुम्हें पता है इस फिल्म में एक गाना था, आएगा आने वाला।
1: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब वह गाना रेडियो पर बजा तो देश भर में हंगामा हो गया। रेडियो स्टेशन पर हजारों चिट्ठी आने लगी कि जी, यह तो जो मधुवाला पर्दे पर गाना गा रही हैं, उसके पीछे असली आवाज किस खूबसूरत लड़की की है। और आप जानती हैं, पब्लिक का ऐसा क्रेज देखकर पहली बार HMV कंपनी को झुकना पड़ा।
0: और तुम्हें पता है, और उन रिकॉर्डों पर सिंगर का नाम छपा जी उस समय से, और वो नाम, पहला जो नाम था वो नाम था लता मंगेशकर जी का। वहीं से हमारे देश को उनकी स्वर कोकिला मिली। तो आइए सुनते हैं वही इतिहास रचने वाला सॉन्ग।
1: जी

0: जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और हमारे साथ हैं आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ हैं राखी बैनर्जी और
1: मैं हूँ आपके साथ शिल्पा।

0: गोस्वामी
1: बिल्कुल। तो दोस्तों आप इस समय सुन रहे हैं गोल्डन मैटिनी मेलोडीज, आपकी दोस्त राखी बनर्जी आपके साथ है, शिल्पा आपके साथ है और हम बात कर रहे हैं हमारी सीक्रेट फाइल की। तो अब बात करते हैं सीक्रेट फाइल की नंबर दो की। आजकल स्टूडियो में अगर बारिश की आवाज़ चाहिए या घोड़े के भागने का साउंड चाहिए तो कीबोर्ड पर एक बटन दबाओ और साउंड हाजिर। पर गोल्डन एरा में ऐसा नहीं था, तब चलता था असली दिमाग और जुगाड़। क्या आपको पता है कि उस दौर में अगर फिल्म में घोड़े के भागने का साउंड चाहिए होता था तो हमारे साउंड आर्टिस्ट दो सूखे नारियल को आपस में एक खास रिदम में टकराते थे। अगर ट्रेन की छुक छुक चाहिए होती थी तो दो रेगमाल जो कि सैंड पेपर कहते हैं उनको आपस में रगड़ा जाता था।
0: और राखी जी हद तो तब हो गई जब आर डी बर्मन यानी हमारे पंचम दा ने फिल्म यादों की बारात के एक गाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक चम्मच को कांच के ग्लास पर अलग अलग तरीके से मारकर एक ऐसी धुन बनाई जो आज भी हर कोई गुनगुनाता है। सोचो असली टैलेंट इसे कहते हैं जहां बर्तन भी संगीत बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात। और तो चलिए सुनते हैं इसी आइकॉनिक गाने को और ध्यान से सुनिएगा वो शुरुआत की टिंग टिंग वाली आवाज
0: जी।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटरनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी
1: और मैं हूँ शिल्पा गोस्वामी। तो राखी, क्या बात है, ये गाना सुनकर मेरा तो मूड एकदम फ्रेश हो गया। और आपका?
0: मेरा तो बिल्कुल फ्रेश हो गया और हमारे श्रोताओं का भी हो गया होगा।
1: बिल्कुल। और देखो, अब सफर के तीसरे सीक्रेट फाइल की बात करते हैं जो जुड़ी है हमारे डांस स्टाइल से। 1950 के दौर में हमारी फिल्मों में सिर्फ क्लासिकल डांस होता था, क्यों, मानती हो ना?
0: बिल्कुल।
1: और साड़ी पहनकर बिल्कुल शर्मीले अंदाज में
0: बिल्कुल,
1: जैसे वहीदा रहमान जी थी, बैजंती माला थी, वो करती थी और पर्दा बिल्कुल शरीफ था।
0: हाँ, पर्दा बिल्कुल शरीफ था का मतलब ये हुआ कि उस समय पर्दे में इतनी शराफत से और इतने
1: शालीनता से
0: डांस नंबर्स किए जाते थे। लेकिन 1960 और 70 आते आते बॉलीवुड में एक ऐसी लड़की आई जिसने स्क्रीन पर आग लगा दी। उसका नाम था हेलेन। हेलेन ने बॉलीवुड में कैबरे और रॉक एंड रोल डांस का नया ट्रेंड शुरू किया। साड़ी की जगह ग्लैमरस वेस्टर्न फ्रिंज ड्रेसेस ने ले ली थी। म्यूजिक डायरेक्शन जैसे ओपी नैयर और आरडी बर्मन ने उनके लिए ऐसी फास्ट बीट्स वाले जैज म्यूजिक बनाया जिसे सुनकर लोग सिनेमा हॉल्स में ही अपनी सीटों पर खड़े होकर नाचने लगते। यह हमारे सिनेमा का वो रूप था जहां इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न पॉप का एक ऐसा धमाकेदार मिक्स हुआ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो चलिए थोड़ा झूम लेते हैं हेलेन के सुपरहिट ट्रैक पर। वो ट्रैक कौन सा है ये बता।
1: तीसरी मंजिल।
0: और हम चाहेंगे कि आप भी अपने अपने घर में इस गाने पे जरूर झूमिएगा।
1: और राखी, यहाँ पर हम दोनों झूमते हैं।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज।
1: राखी, फुल एनर्जी के इस डांस नंबर के बाद चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी पहचान की जो हमारे सामने तो थी पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हम सब ने अमिताभ बच्चन का वो मशहूर गाना तो सुना ही है, माय नेम इज एंथनी गोलसर्विस, ठीक है, बट हम सबको लगता है कि यह बस एक मजाकिया गाना है और राखी एंथनी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, पर दोस्तों सच इससे बिल्कुल अलग है।
0: बिल्कुल सही बात शिल्पा, एंथनी गोंसाल्विस कोई फिल्म का कैरेक्टर नहीं था बल्कि गोल्डन एरा के एक बहुत बड़े रियल लाइफ संगीतकार और वॉयलिनिस्ट थे। उन्हें म्यूजिक अरेंजर भी कहा जाता था, यानी आम भाषा में समझे तो म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाता है पर उस धुन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब बजेगा, वॉयलिन कब बजेगा, गिटार कब रुकेगा, ये सब अरेंजर तैयार करता है, यानी गाने की असली जान। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के जो प्यारेलाल जी थे वो रियल लाइफ में एंथोनी गोंसाल्विस के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने गुरु को सम्मान यानी ट्रिब्यूट देने के लिए इस

0: गाने का नाम उनके नाम पर रखा था, है ना दिलचस्प बात शिल्पा?
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए इस बात पर सुनते हमारी असली एंथोनी गोंजाल्विस के नाम का ये शानदार गाना।
1: बिल्कुल।
2: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: What?
4: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूस महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, यह आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

सामिन, अभी आप आशा भोसले की आवाज में ये गजल सुन रहे थे। कलाम था काबिल अजमेरी का। सामिन, गजल अपने खूबसूरत और जज्बाती अंदाज बयान के लिए मशहूर है। गजल में शायर जो कहता है, सुनने वाले को मानो अपने ही दिल की आवाज मालूम होती है। गजल के अल्फाज ऐसे रूह में पेवस्त हो जाते हैं कि सुनने वाले की रूह तक झूम उठती है। जिंदगी गुजरी मगर संगीन तूफानों के साथ, जिंदगी गुजरी मगर संगीन तूफानों के साथ, जैसे कोई शीशा कर रहता हो दीवानों के साथ।

कर देती है। हमने शोलों पे भी जबी रख दी, हमने शोलों पे भी जबी रख दी, दिल का सजदा अदा नहीं होता, दिल का सजदा अदा नहीं होता।

0: और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंपों में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, वहीं पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has described the annual

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। इस क्रम में सबसे पहले

खोए व्यक्ति का नाम है साहिल। इनके पिता का नाम है बबलू, निवासी ग्राम नगला, रूमी, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार ग्राम नगला रूमी पर देखा गया है सोमवार दिनांक 25/5/2026 दोपहर 10 बजे। इनकी आयु करीब 15 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। चेहरे का रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना खुर्जा नगर, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है अंश, पिता का नाम है राकेश, निवासी ग्राम पला, थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर। अंतिम बार इन्हें इनके घर पर ही देखा गया है शुक्रवार दिनांक 22/5/2026 तक। आयु 12 वर्ष है। कद 4 फुट 6 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है प्राची। इनके पिता का नाम है मनोज कुमार। अंतिम बार इन्हें ग्राम जसर, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर में दिनांक 27/2/2026 तक देखा गया है। आयु 17 वर्ष है। कद 5 फुट 3 इंच है। शरीर की बनावट आंख, नाक, कान औसत हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है मयंक। इनके पिता का नाम है नीरज, निवासी मोहल्ला आर्य नगर, बाईपास रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर। अंतिम बार इन्हें इनके घर पर ही देखा गया है दिनांक 3/10/2025 तक। इनकी आयु 12 वर्ष है। कद 5 फुट है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर है और चेहरे का रंग गोरा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है मधु। इनके पति का नाम है कन्हैया। अंतिम बार इन्हें 29/5/2026 तक देखा गया है। आयु 30 वर्ष है। कद 5 फुट है। शरीर की बनावट आंख, नाक, कान औसत हैं। रंग सांवला है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, कोतवाली नगर, बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है पूनम। इनके पिता का नाम है ऊधम सिंह, निवासी मानपुर। अंतिम बार इन्हें 28/5/2026 तक देखा गया है। इनकी आयु 28 वर्ष है। कद 5 फुट 4 इंच है। शरीर की बनावट दोहरा वजन है। चेहरे का रंग गोरा है। ये घर से दवाई लेने के बहाने निकली थी और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना नगर लाइंस, जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 4:15 होने को है और 4:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

0: प्रत्यक्ष, आपको पता है कौन सा सॉन्ग है?
1: ये कैसी पहली जिंदगानी है भाई सुनिधि चौहान।
0: एकदम सही गैस करा आपने। और शायद आजकल हम सबके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे होते हैं, ये कैसी पहेली है जिंदगानी, हर दिन कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:15। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का युवावाणी में, आकाशवाणी इंद्रप्रेस के इस खास युवा मंच पर, जहां हम बात करते हैं उन ख्यालों की, उन कहानियों की और उन विचारों की जो हमारी युवा पीढ़ी को बदलती है और हमारी सोच को एक नई दिशा दिखाती है। मैं हूं अनुषा।
1: और मैं हूं प्रत्यक्ष। और आज का एपिसोड बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सब चेहरों की जो इस वक्त पूरे देश के यूथ के बीच चर्चा में है। बॉलीवुड, सिनेमा, क्रिकेट, के पॉप और ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स के बारे में जो लिटरली हिस्ट्री बन गया है।
0: वैसे प्रत्यक्ष, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं?
1: हाँ हाँ।
0: आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट कंज्यूमिंग कंट्रीज में से एक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवरेज यंग इंडियंस रोजाना कई घंटे फिल्म्स, रील्स, वेब सीरीज और म्यूजिक पर टाइम एंड मनी दोनों स्पेंड करते हैं।
1: बिल्कुल अनुषा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज एंटरटेनमेंट हमारी रूटीन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। हेक्टिक दिन के बाद एक फिल्म, एक गाना, एक अच्छी सीरीज कभी कभी वही सुकून दे देती है जो लफ्जों में कहना मुश्किल होता है। बिना देर किए सुनते हैं आज का पहला गाना।

0: वेलकम बैक दोस्तों, और शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन आज की बात से। प्रत्यक्ष, मैंने एक बात काफ़ी नोटिस करी है, आजकल हम कोई भी कॉन्वर्सेशंस उठा लें, सब में एक टॉपिक हमेशा कॉमन रहता है, कौन सी मूवी ट्रेंडिंग है, कौन सी सीरीज देखनी चाहिए, OTT पर क्या नया आया है, जैसे एंटरटेनमेंट हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टेंट पार्ट बन गया हो।
1: बिल्कुल अनुषा, शायद इसीलिए आज यूथ के लिए एंटरटेनमेंट एस्केप भी है और एक्सप्रेशन भी, क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट देखते नहीं हैं, उसे फील करते हैं, उससे रिलेट करते हैं और कई बार उसमें अपनी ही कहानियां देख लेते हैं। एंड ऑलमोस्ट हर जगह सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें होती हैं।
0: एग्जैक्टली, आज अगर कोई नई फिल्म रिलीज होती है या कोई सीरीज ट्रेंडिंग करती है तो अगले दिन आप देखोगे कॉलेज, मेट्रो, सोशल मीडिया, हर जगह उसी की बात होती है। कभी पंचायत, कभी फैमिली मैन, कभी स्क्विड गेम, और जैसे अभी ऑफ कैंपस।
1: अरे अनुषा, सिर्फ ट्रेंडिंग कॉन्टेंट ही नहीं, हम सबके पास एक कंफर्ट फिल्म भी होती है। कुछ लोग स्ट्रेस में ये जवानी है दीवानी देखते हैं, कुछ बार बार भूल भुलैया या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पर लौट आते हैं।
0: सही कहा, शायद इसीलिए एंटरटेनमेंट सिर्फ टाइम पास नहीं है, कभी कभी एक अच्छा गाना मूड बेटर कर देता है, कभी एक फिल्म हमें इतना इंस्पायर कर देती है, और कभी एक सिंपल कॉमेडी सीन पूरे दिन की थकान दूर कर देता है।
1: सच में, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर इंसान का मूड उसकी प्लेलिस्ट या वॉच लिस्ट से समझ आ जाती है।
0: अब प्रत्यक्ष ने प्लेलिस्ट की बात कर दी है तो इसी बात पर अपने लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जो एनर्जी, इमोशन और एंटरटेनमेंट तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सुनिए सडी गली फ्रॉम द मूवी तनु वेज मनु।

0: मास कम्युनिकेशन के फील्ड में और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर भी काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
1: आपका बहुत बहुत आभार संचिता जी।
0: जैसा कि मैम आजकल के मीडिया में हम देख रहे हैं, तो मीडिया में कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है अभी के टाइम में?
1: संचिता जी, अगर हम संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो मीडिया में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो संचार ही है। अभिव्यक्ति है, हम अपने शब्द, अपने इमोशंस को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, और मीडिया एक इतना सशक्त माध्यम है जिससे हम संचार के माध्यम से हर चीज को प्रेषित करते हैं। आपका वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है या डिजिटल मीडिया है, और डिजिटल मीडिया में तो कम्युनिकेशन का स्कोप हर तरीके से आज आगे है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को विद इन 2 सेकेंड्स जो है वो फ्रेम आउट करके आगे पोर्ट्रे कर देते हैं। मतलब एक आम व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल स्ट्रीम में या हर तरीके से कम्युनिकेशन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशन के आप जीवन भी नहीं सोच सकते। आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने इमोशंस को किसी से आपको शेयर करना है, कुछ भी आपको फील शेयर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संचार के माध्यम से ही होता है।
0: जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल मीडिया में अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो गया है, भले ही 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, हम अपने बात को जितने छोटे वक्त में हम दर्शा सकें वो कोशिश करते हैं। तो इससे बचने के लिए, या फिर जैसे कि हम AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए,
1: जी।
0: तो ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बताना चाहेंगी यूथ को?
1: आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अटेंशन स्पैन की, सीकिंग की। यूथ जो है वो हर मिनट कुछ नया चाहता है, वो बोर हो जाता है, वो 5 सेकंड के बाद कुछ नया चाहता है देखने के लिए। रील्स को हम खटाखट ऊपर करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि हमें कुछ नया चाहिए। और जब से डिजिटल मीडिया आया है तब से जो प्रोड्यूसर मार्केट है वो किसमें चेंज हो गया है? कंज्यूमर में। आज जो यूजर है वो ही प्रोड्यूसर बन गया है, क्योंकि वो खुद अपनी चीजें क्रिएट कर रहा है, कॉन्टेंट खुद ही शेयर कर रहा है। तो हमारा जो मार्केट है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ट्रांसफर हो गया। आज हम खुद ही कॉन्टेंट को शेयर कर रहे हैं, हम खुद ही क्वीन है, हम खुद ही किंग है। तो यहाँ पर हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती है वो ये है कि हम किस तरीके से अटेंशन को क्रिएट करें। हमें हर टाइम कुछ नया चाहिए देखने के लिए। हमें एक और चुनौती उसी के साथ क्या आती है कि आपको नया तो परोसना है, लेकिन उस नए को परोसने के साथ आप फैक्ट्स को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि होड़ लगी रहती है। हर डिजिटल मीडिया ये कहता है कि सबसे पहले मैंने प्रेषित किया, सबसे पहले मैंने उस चीज को क्या किया, ऑन एयर कर दिया। आज के दौर में मीडिया के पास सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ये करता है फैक्ट्स को चेक करना। आप कोई भी चीज जब दे रहे हैं उससे पहले अगर आप उसको चेक नहीं करते हैं, आप फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस जिसमें आगे अगर आप देखते भी हैं फॉरवर्डेड लिखा आता है, तो आप ये देखिए कि एक ऐसा छोटा सा मैसेज जिसको आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया और उसकी सूचनाएं जो है वो गलत प्रेषित है, तो कितने बड़े मास मीडिया को वो इफेक्ट करता है। तो अटेंशन स्पैन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोड्यूसर मार्केट है वो खुद कंटेंट को क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में उसे ये ध्यान रखना है कि जहां से समाचार आ रहा है, जो सोर्स है, वो कितना रिलायबल है, हमने फैक्ट्स को किस तरह से चेक किया है और किस तरह से हमने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है।
0: बहुत ज्यादा ह्यूमन इमोशंस लैक कर रही है AI, उसको भी हम मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें आजकल हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन इंटरेस्ट को डेवलप करना और ये देखना कि कंज्यूमर क्या चाहती है हमसे देखना।
1: हाँ। जैसे हम किस तरह की, आपने देखा ही होगा संचिता जी, हम किस तरह की स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं, हम उस तरह की चीजें चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो खुद ही कंज्यूमर है वो क्या देखना चाहता है। हर तरीके से हम उस तरह की स्टोरीज को क्रिएट करते हैं कि वो क्या नया चाहता है। और बल्कि लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां भी है, उनको ये लगता है कि डिजिटल मीडिया की होड़ है, सब डिजिटल मीडिया में ही जाना चाहते हैं, सब कंटेंट क्रिएशन में ही जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी प्रिंट मीडिया का भी आजकल अपना उतना ही इन्फ्लुएंस है जितना डिजिटल मीडिया का था। और मैगजीन्स आप कहिए, न्यूज़पेपर्स आप कहिए, बल्कि रीजनल न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव बक्ड द ग्लोबल ट्रेंड। हमारे मराठी है, मलयालम मनोरमा है, इनाडू टीवी है, तो इतने सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर विदेशों की अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा प्रिंट मीडिया जो है वो हमारा ताकतवर बन रहा है। तो कहीं से हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रिंट जो है वो डिक्लाइन में है या डिजिटल बूम पर है। डिजिटल अपने बूम पर है क्योंकि डिजिटल जो है वो इजी एक्सेसिबल है। क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि यूथ के पास हर टाइम मोबाइल रहता है, वो हर टाइम कुछ ना कुछ देखना चाहता है, हर टाइम उसको कुछ नया चाहिए, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है चीजों से। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है, बोर हो जाना। ये जो प्रवृत्ति है ये बहुत खतरनाक है, और खासकर मीडिया को लेकर, क्योंकि मीडिया के पास ये चुनौती रहती है कि वो क्या नया दिखाए, क्या नई सूचना को प्रेषित कर।
0: जो यूथ या फिर स्टूडेंट कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज अक्वायर करना चाहते हैं, उनको क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए इस मोमेंट में?
1: देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगी, यूथ आजकल जो है हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्किल्ड है. स्किल्ड किस तरीके से है, क्योंकि एआई का जमाना है, बहुत से ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जहां पे वो इजिली देख कर और कैच कर सकता है कि उसे क्या क्या चीजें चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ फिर भी सबसे पहला तो उसका कम्युनिकेशन

0: कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको संवाद करना बहुत अच्छा से आना चाहिए। आप किससे संवाद कर रहे हैं, आपका लेखन कैसा है, आप सामाजिक मुद्दों पर किस तरह से बात करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, लिखने का आपका क्या स्टाइल है, कैसे आप चीजों को बांधते हैं, पिरोते हैं और फिर प्रेषित करते हैं। एक होता है कि आपको बहुत अच्छी चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कलेक्ट करने के बाद वो आपको आगे प्रेषित करनी भी आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सारी स्किल्स अगर आपके पास है तो आप बतौर मीडिया में कोई भी काम कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि मीडिया की एक ऐसी जो विधा है ये कहीं ना कहीं इनहेरेंट होती है। आज कोई भी मीडिया में जो छात्र है वो किसी के कहने पर नहीं आया है, उसके अंदर से वो आवाज है कि उसे मीडिया में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उसके अंदर एक रचनात्मकता है। तो ही और शी इज ब्लेस्ड इटसेल्फ कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो उसको इस विधा के लिए खींचती है।
1: जैसे कि आपने कहा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हमें जरूरी है हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तभी सामने वाला इंसान समझेगा बात को। मैम आपके इंसाइटफुल और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार संजीदा जी।
2: ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बातचीत। हर सफर अपने साथ नई सीख, नए नजरिए और कुछ नए सवाल लेकर आता है।
3: इसी नोट के साथ बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सॉन्ग के साथ, ओ गुजरिया फ्रॉम क्वीन।

0: और वक्त है हमारे अगले सेगमेंट क्विक बज का, जहां हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में चल रहे उन खबरों की जो इस वक्त यूथ के बीच एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही हैं।
1: बिल्कुल, और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 इंडियन सिनेमा के लिए बहुत एक्साइटिंग ईयर बन चुका है। साल की शुरुआत में बॉर्डर 2 और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स ने एक बार फिर दिखाया कि बड़े पर्दे का मैजिक आज भी यंग ऑडियंस को उतना ही अट्रैक्ट करता है।
0: बिल्कुल, और एक नया ट्रेंड जो काफी फास्ट ग्रो कर रहा है वो है ओटीटी कल्चर। आजकल यूथ का पहला सवाल ये नहीं होता कि टीवी पर क्या आ रहा है, बल्कि ये होता है नेटफ्लिक्स या प्राइम पर क्या ट्रेंडिंग है। एंटरटेनमेंट का मतलब अब टीवी वाली बड़ी स्क्रीन नहीं रहा।
1: Exactly. और अगर आज के दौर से कंपेयर करें तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया भी काफी एक्साइटिंग होती जा रही है। आर्टिस्ट जैसे दिलजीत दसांझ, एपी ढिल्लों, करण औजला, अनुव जैन और इवन हनुमान काइन, इन सब ने ये प्रूव कर दिया है कि आज के लिसनर्स सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि नए साउंड्स, फ्रेश वोकल्स और ग्लोबल कोलैबोरेशंस को भी इक्वली सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: आई अग्री अनुषा, कोलैबोरेशन कल्चर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडियन आर्टिस्ट अब ग्लोबल क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं और म्यूजिक बाउंड्रीज धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। आज एंटरटेनमेंट ट्रूली ग्लोबल हो चुका है,
1: सच का प्रत्यक्ष। और अगर गौर करें तो एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन भी आज काफी बदल गई है। पहले हम इसे सिर्फ म्यूजिक या सिनेमा से जोड़ते थे, लेकिन आज स्पोर्ट्स भी उसी एक्साइटमेंट और क्रेज का हिस्सा बन चुका है। तो एक एक्साइटिंग खबर फॉर ऑल आर स्पोर्ट्स लवर्स, टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड टूर पर है और एक बार फिर ये दिखा रहा है कि भारत में क्रिकेट कभी भी एक स्पोर्ट नहीं रहा। क्रिकेट हम सबके लिए एक इमोशन है और एंटरटेनमेंट कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी।
0: पता है अनुषा, गवर्नमेंट बहुत सी योजनाएं नागरिकों की सुविधा के लिए लाती है, लेकिन सूचनाओं के अभाव में वो उन्हें नहीं मिल पाती। पर हमारे लिसनर्स किसी भी सुविधा से वंचित ना रहें, इसके लिए मेरे पास नोएडा के लिसनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है।
1: अरे वाह, क्या?
0: रुको, बताता हूँ। हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध नगर में सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए को लेकर श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के नेतृत्व में ग्रामगढ़ी चौखंडी श्री जगन्नाथ मंदिर 121 नोएडा कल 4 जुलाई शनिवार को एक निशुल्क शिविर का आयोजन गोपाल नमो सेवा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। आप सभी आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक पहुंचकर इन योजनाओं से जुड़े एवं अन्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त करें। आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल फोन अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9891208720 पर संपर्क करें।
1: और अब सुनाते हैं एक और सॉन्ग जो है अंबर सरिया फ्रॉम द मूवी फुकरे।

0: और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का जो है टुडे इन हिस्ट्री, जहां हम याद करते हैं उन खास पलों को जिन्होंने किसी ना किसी रूप में दुनिया पर अपनी अलग छाप छोड़ी। प्रत्यक्ष आज थोड़ा उछलाए है तो बताइए एंटरटेनमेंट और कल्चर की दुनिया में आज क्या क्या एक्साइटिंग हुआ था।
1: अनुषा आज 3 जुलाई है और ऐसे मौकों पर हमें उन क्रिएटिव माइंड्स को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इंडियन एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग की बुनियाद मजबूत की। मुंशी प्रेमचंद उन्हीं नामों में से एक हैं जिनकी रचनाएं आज भी लिटरेचर से लेकर सिनेमा तक इंस्पिरेशन देती हैं।
0: सच ही है, वक्त बदलता है, मीडियम्स बदलते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी की ताकत कभी कम नहीं होती। और कहानियों से याद आया प्रत्यक्ष, और क्या क्या हुआ था आज?
1: बिल्कुल, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 3 जुलाई 1962 को हॉलीवुड के आइकॉनिक एक्टर टॉम क्रूज का जन्म हुआ था। मिशन इम्पॉसिबल जैसे फिल्म्स के थ्रू उन्होंने एक्शन सिनेमा को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी।
0: और इसी से अब एक सॉन्ग सुनवाते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो है तुमसे ही, फ्रॉम माय फेवरेट मूवी जब वी मेट।

0: वैसे प्रत्यक्ष जुलाई का महीना इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री के लिए काफी खास माना जाता है। इस दौरान टेलीविजन ने भारत के घर में एंटरटेनमेंट को एक शेयर्ड फैमिली एक्सपीरियंस बना दिया है।
1: बिल्कुल, और शायद इसी वजह से टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज ने जनरेशन को एक साथ बिठाकर देखने की आदत दी।
0: बिल्कुल, और शायद इसीलिए सिनेमा का जादू इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि चाहे कहानी किताब से निकली हो, एक फिल्म से, या किसी अलग कल्चर से, अगर इमोशन सच्चे हो तो वो हर दिल तक अपना रास्ता बना लेते हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से आज की जनरेशन चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड, रीजनल सिनेमा और इवन एनिमे तक को इतना ओपनली सेलिब्रेट इसलिए कर पाते हैं, बिकॉज ट्रूली गुड स्टोरी टेलिंग हैज नो लैंग्वेज बैरियर।
1: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत नोट के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे आज के सफर के आखिरी पड़ाव पर। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको एंटरटेनमेंट की

0: दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका दे पाई होगी।
1: बिल्कुल, आज की शाम को और सुहाना बनाने के लिए सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत गीत, और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। मैं अनुषा
0: और मैं प्रत्यक्ष,
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है।

16. For the quarterfinal berth, Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी.

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए प्रियंका, भारतीय संगीत में लोकगीतों की खास जगह है और हर जगह, राज्य, शहर, गांव, कोई भी हो, लेकिन उसकी पहचान होती है हमारे लोकगीतों से।
1: बिल्कुल।
0: जो कि हर अवसर पर, मौसम हो, चाहे कोई भी घर में त्यौहार हो या आस पड़ोस में त्यौहार हो, सब चीज को बहुत ही खूबसूरती से लोकगीतों के माध्यम से हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल भाई, तीज त्योहार के अलावा अगर हम बात करें रोजमर्रा की, हमारी जो जिंदगी है उसका दर्पण भी हम अपने लोकगीतों में देख सकते हैं। और जब मियां बीबी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती है ना, तो उस पर आधारित एक लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं और कलाकार होंगी सविता शर्मा।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पति पत्नी के बीच की नोक झोंक लोक संगीत के माध्यम से, और गा रही थी सविता शर्मा, जो हमारी कलाकार का नाम था। और सुनते हैं अगला एक और गीत, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और सुनिए प्रियंका चौधरी की आवाज में ये एक और लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी की आवाज़ में बहुत ही सुंदर लोकगीत अंगुलियां आपस में बतलाए। और भाई पांचों उंगलियों का अपना अलग महत्व है, बेशक हमारे हाथ में जो एक अंगूठा और चार उंगलियां आपस में अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन जब ये साथ मिल जाती हैं तो ही एक मुट्ठी बनती है और सबका अपना अलग महत्व है। और अब आपको सुनवाते हैं बबीता चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: तो श्रोताओं, बबीता चौधरी के गाए हुए इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम लोक रंजनी हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स भी खेले जा चुके हैं, उस पर रिपोर्ट देंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच का पूर्वावलोकन भी आप इस कार्यक्रम के दौरान सुनेंगे। साथ ही साथ कनाडा ओपन, विंबलडन और बास्केटबॉल स्मैश और स्क्वैश के अलावा बैडमिंटन में घरेलू टूर्नामेंट्स के लिए पॉइंट सिस्टम्स में जो बदलाव किए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से।

0: जैसा कि आप लोगों ने धुन से अंदाजा लगा ही लिया होगा, हम बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 की, जहां बीते दिन राउंड ऑफ 32 के तीन बड़े मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच खेला गया, जिसमें यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। लॉस एंजलस स्टेडियम में खेले गए इस एक तरफा मैच में स्पेनिश टीम की ओर से फॉरवर्ड मिकेल ओयारज़ाबाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बेहतरीन गोल दागे, एक 36वें मिनट में और एक 89वें मिनट में। वहीं मैच का दूसरा गोल 66वें मिनट में पेड्रो पोरो ने एलेक्स बाइना के पास पर हेडर के जरिए किया, जो उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय गोल भी था।
1: Breaks now for Cucurella and Baena. Oh yes, 2-0. Perfect position for Porro on the six-yard line, heading down past Schlager. Easiest of goals, similar to the first. They make it two. That is what Spain is all about.
0: मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते के मार्गदर्शन में स्पेन ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और ऑस्ट्रियाई टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ स्पेन ने अपने नॉकआउट के सूखे को खत्म कर दिया। बात करते हैं राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले की, जो पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच खेला गया। बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। टोरंटो स्टेडियम में खेले गए इस मैच के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं, लेकिन दूसरे हाफ के 53वें मिनट में इवान पेरिच ने शानदार गोल कर क्रोएशिया को 1-0 की बढ़त दिला दी।
1: बैक पोस्ट स्टानिसिच फॉर द क्रॉस, इट्स गोना कम टू पेरिसिच एंड क्रोएशिया हैज स्कोर्ड।
0: इसके बाद पुर्तगाल ने वापसी के लिए दबाव बनाया और 68वें मिनट में कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के साथ रोनाल्डो विश्व कप नॉकआउट इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। मैच के आखिरी पलों में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला और 94वें मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी गोंसालो रामोस ने राफेल लियाओ के क्रॉस पर बेहतरीन हेडर के जरिए गोल दागकर पुर्तगाल को 2-1 से आगे कर दिया। मैच के बिल्कुल अंतिम क्षणों में क्रोएशिया के जोस्को ग्वार्डियोल ने गेंद को नेट में डाल दिया था और ऐसा लगा कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन बेहद करीबी VAR रिव्यू के बाद उसे ऑफसाइड करार दिया गया। इस हार के साथ क्रोएशिया दिग्गज लुका मॉड्रिच के अंतिम विश्व कप का सफर समाप्त हो गया, जबकि पुर्तगाल अब प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा। अब बात करते हैं राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले की, जो भारतीय समय अनुसार आज सुबह खेला गया। यह मुकाबला स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच में हुआ। स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक नॉकआउट मैच में स्विट्जरलैंड ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी। मैच के 10वें मिनट में ही युवा खिलाड़ी जोहान मंजाबी के शानदार पास पर ब्रिल एम्बेलो ने गोल कर स्विट्जरलैंड को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी।
1: Manzambi. Good surge this. Johan Manzambi still goes.

0: place at the right time.
1: इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही 46वें मिनट में डेन एंडॉय ने दूसरा गोल दाग कर अल्जीरिया की वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया।
2: His delivery straight towards Insigne, who should have cleared, and again they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Ah, they've got their eyes on the last 16 now.
1: अल्जीरिया के कप्तान रियाद महरेज और उनकी टीम ने वापसी के कुछ प्रयास जरूर किए, लेकिन वे स्विस टीम के मजबूत रक्षात्मक घेरे को भेदने में नाकाम रहे। इस ऐतिहासिक जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने विश्व कप इतिहास में साल 1938 के बाद अपनी पहली नॉकआउट जीत दर्ज की है, जिससे उनका 88 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। अब बात राउंड ऑफ 32 में आज खेले जाने वाले मुकाबलों की। भारतीय समय अनुसार आज देर रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र का मुकाबला होगा। ईरान के साथ ड्रॉ के बाद मिस्र ने ग्रुप जी में रनर अप के तौर पर लास्ट 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था और बेल्जियम के साथ पहला मैच ड्रॉ खेला था। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सलाह का शानदार टैलेंट और उनकी पहचान चर्चा का मुख्य विषय रही। ऑस्ट्रेलियाई नॉकआउट राउंड में पहली बार जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने इतिहास में तीसरी बार और लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है। इससे पहले 2022 में कतर में हुए वर्ल्ड कप में पूर्व कोच ग्राम अर्नॉल्ड की देखरेख में टीम लास्ट 16 में अर्जेंटीना से हार कर बाहर हो गई थी, जो बाद में चैंपियन बनी। अगला मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 3:30 पे अर्जेंटीना और कैप वर्दे का होगा। लियोनेल मेसी पर एक बार फिर अर्जेंटीना की उम्मीदों का दारोमदार होगा। शानदार फॉर्म में चल रहे 39 वर्षीय मेसी विश्व कप में अब तक 6 गोल दाग चुके हैं। उनके मैजिक से अर्जेंटीनी टीम जीत की हैट्रिक के साथ नॉकआउट में पहुंची है। अब राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन के सामने करीब 5.5 लाख की आबादी वाले कैप वर्दे की टीम होगी। उसके 40 वर्षीय गोलकीपर वोजीना के अभेद्य दीवार को भेदना अर्जेंटीना के लिए बड़ी चुनौती होगी। पहली बार विश्व कप में खेल रहा कैप वर्दे नॉकआउट में जगह बनाने वाला सबसे छोटा देश है। टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वे बिना किसी दबाव के मैदान में उतरेगी और इस बड़ी चुनौती का पूरा आनंद लेगी। राउंड ऑफ 32 में घाना का सामना करते हुए कोलंबिया अपने अब तक के सबसे मजबूत ग्रुप स्टेज प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके रास्ते में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा है, उनके पूर्व कोच कार्लोस क्विवरोज। पुर्तगाली कोच क्विवरोज ने 2019 से 20 तक कोलंबिया को कोचिंग दी थी, लेकिन उरुग्वे और इक्वाडोर से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचों में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने टीम छोड़ दी थी। अब वे घाना को टूर्नामेंट की सबसे अच्छी तीसरे स्थान वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट स्टेज में पहुंचाने के बाद अपनी पुरानी टीम का सामना करेंगे, जहां घाना ग्रुप एल से इंग्लैंड और क्रोएशिया के बाद 4 पॉइंट के साथ आगे आई है। वहीं कोलंबिया ग्रुप के में बिना कोई मैच हारे आगे बढ़ी। अपने आखिरी ग्रुप मैच में बिना किसी गोल के रोमांचक ड्रॉ के बाद वे पुर्तगाल से ऊपर रहे। नेस्टर लॉरेंजो की कोलंबियाई टीम ने चुपचाप टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली टीमों में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने मजबूत डिफेंस के साथ साथ ऐसे आक्रामक फुटबॉल का मेल बिठाया है, जिसकी बदौलत वे उस ग्रुप में टॉप पर रहे जिसे कई लोग सबसे मुश्किल ग्रुप में से एक मानते थे। कोलंबिया और घाना का ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार कल यानी शनिवार सुबह 7 बजे खेला जाएगा। इन 3 मुकाबलों के साथ ही फीफा विश्व कप में राउंड 32 के मुकाबलों का समापन हो जाएगा, जिसके बाद राउंड 16 के मुकाबले शुरू होंगे।

फीफा के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान में और आईसीसी T20 विमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स दोनों हो चुके हैं और दूसरे सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच, जहां इंग्लैंड को जीत हासिल हुई। 20 ओवर में 169 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन बनाए और परिणाम ये रहा कि इंग्लैंड 40 रन से विजयी होगी। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। इंग्लैंड की शुरुआत जो थी वो, इंग्लैंड की अगर बात करें हम बैटिंग की, तो पहली गेंद पर ही एमी जॉन्स आउट हो गई और डैनी वॉर्ड जी जल्दी पवेलियन लौट गई।

0: एलिस कैप्सी भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। महज 23 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड मुश्किल में था और तभी कप्तान नेट्स कीवर बर्न्ट और अनुभवी हीथर नाइट ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 133 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो महिला टी20 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों की सबसे बड़ी साझेदारी थी। और नेट्स कीवर बर्न्ट ने 75 रन बनाए 47 गेंदों में, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। और इनके साथ देने वाली हीथर नाइट ने 58 रन बनाए 37 गेंदों पर, और ये इन दोनों की साझेदारी बनी 133 रनों की, जो कि इतिहास दर्ज हो गया इस साझेदारी से। और क्या कहती हैं नेट स्कीवर बर्न्ट अपने इस प्रदर्शन पर और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर? और दोनों की साझेदारी जो 133 रन की बनी थी, इंग्लैंड ने अंतिम ओवरों में विकेट गंवाए लेकिन चुनौतीपूर्ण 169 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर अगर हम ध्यान दें तो शबनम इस्माइल, जिन्होंने 2 विकेट बनाए, और नॉनकुलेको मलाबा, जिन्होंने 2 विकेट लिए, और उन्हीं के साथ मैरिजन कैप ने भी 1 विकेट लिया। शबनम इस्माइल ने इस मैच में महिला टी20 विश्व कप इतिहास की 50 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका की अगर बैटिंग पारी की बात करें तो 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने संभल कर शुरुआत की, और लॉरा वॉल्वर्डर्ट और तजमिन ब्रिट्स ने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े, लेकिन कप्तान वॉल्वर्डर्ट के आउट होते ही इंग्लैंड ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। तजनिम ब्रिट्स ने 51 रन बनाए 45 गेंदों पर, और लॉरा वॉल्वर्डर्ट काफी उपयोगी शुरुआत करी। अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके। ब्रिट्स ने अकेले संघर्ष किया, लेकिन उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें भी खत्म हो गई। पूरी टीम 20 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई 8 विकेट के नुकसान पर। और इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर अगर ध्यान दें, गेंदबाजी पर अगर ध्यान दें तो लॉरेन बेल 2 विकेट, चार्ली डीन 2 विकेट, लिंसी स्मिथ ने 1 विकेट और फ्रेया कैंप ने 1 विकेट लिया। सोफी एक्लिस्टन ने भी 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने शानदार फील्डिंग और अनुशासित गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका को कभी मैच में लौटने का मौका नहीं दिया। तो क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका की टीम के कोच, आइए सुनते हैं।
1: If you get to the semi, you must have done something right, and I think we did do something right. Maybe not to the best way in terms of how we wanted to do it, but at the end of the day, you want to get World Cup wins, and we did get that. But I think today you got to give credit to England. I think they were really good. They're incredible, and to be fair, 2 of the best teams in the tournament are in the final.
0: ये थे साउथ अफ्रीका टीम के कोच मंडला मशीलाई, और इस मैच में जीत मिली इंग्लैंड को। और शानदार पारी खेली इंग्लैंड की कैप्टन नेट्स कीवर बर्न्ट ने, और साथ ही साथ इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। तो आइए अब सुनते हैं क्या कहते हैं कैप्टन।
2: What we've been able to do as a team. So, yeah, I suppose trying to live up to the 3 games I missed. And, yeah, I suppose still have an impact as a leader and as a cricketer. So, yeah, managed to sort of put those thoughts to bed, you know, for the warm-up starting. And I suppose it's the sort of moment where you switch on to game mode and, yeah, get into the day. So, just so excited and proud of what I've been able to do today.
3: और अब क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी शनिवार को 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 68 और अभिषेक शर्मा ने 59 रन के शानदार अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवर में 189 रन 7 विकेट के नुकसान पर एक मजबूत स्कोर बनाया था, लेकिन इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों टीमें इस दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। मैनचेस्टर की पिच आमतौर पर बल्ले और गेंद के बीच एक संतुलित मुकाबला प्रदान करती है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग

0: सकती है, जिससे दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होगी। वहीं बात क्रिकेट की चल रही है तो आपको बता दें कि टीम इंडिया दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने अगले महीने श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड SLC ने गुरुवार को यह घोषणा की। टेस्ट मैच 15 से 27 अगस्त के बीच गॉल और कोलंबो में खेले जाएंगे। ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पहला टेस्ट गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 5 अगस्त से खेला जाएगा, जबकि दूसरा 23 अगस्त से कोलंबो के SSC में होगा। भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज 3-0 से जीती थी।
1: और साथ ही साथ ये भी बताते चले, ICC T20 वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड कप जो चल रहा है, उसमें अब 5 जुलाई को लॉर्ड्स में महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा, जहां मेजबान इंग्लैंड की भिड़ंत मौजूदा और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। और दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही हैं, जिससे यह फाइनल बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। और अब चलते हैं कनाडा ओपन की तरफ। कनाडा ओपन में क्या है खास, वो जानते हैं। मार्कम में हो रहे कनाडा ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में तान्या हेमनाथ की हार के साथ ही बैडमिंटन में भारत का सफर खत्म हो गया। तान्या को दूसरे राउंड में जापान की रिको गुंजी ने 21-11 से हराया। और इससे पहले हेमनाथ ने शुरुआती राउंड में अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16 21-18 से हराया था। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट आकर्षि कश्यप ने फ्रांस की एना ट्रेटानोवा के खिलाफ अपना शुरुआती राउंड का मैच तो जीता, लेकिन दूसरे राउंड में अमेरिका की चौथी सीड बेवन झांग से 22-20 17-21 17-21 से हारकर बाहर हो गई। कल का दिन भारत की बैडमिंटन टीम के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि 9 में से 7 भारतीय शटलर शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गए। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 किदांबी श्रीकांत चोट के कारण अपने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच से हट गए, और उस समय वे मलेशिया के ली जी जिया के खिलाफ 11-10 से पीछे चल रहे थे। सनित दयानंद और शंकर सुब्रमण्यम भी पहले राउंड में ही बाहर हो गए, जिससे भारत का सफर खत्म हो गया। और आज देर रात होने वाले कुछ मुकाबले हैं जो खेले जाने हैं, और उन मुकाबलों की जो भी अपडेट होगी वो आपको कल के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में जरूर दी जाएगी।
0: और अब बैडमिंटन से चलते हैं एक और रैकेट गेम की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्क्वैश की। मुंबई के जूहू विले पार्ले जिम खाना क्लब में आयोजित हो रहे PSA स्क्वैश चैलेंजर टूर के सेमीफाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, जहां भारत के लिए मिली जुली किस्मत देखने को मिली। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में भारत की तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी खन्ना ने जापान की अकारी मिदोरी कावा को 44 मिनट तक चले एक कड़े मुकाबले में 11-4, 9-11, 11-7, 3-11 और 11-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जिससे उन्होंने इस टूर्नामेंट में भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा। हालांकि पुरुष वर्ग में घरेलू फैंस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी विलावन सेंथिल कुमार को मिस्र के दूसरी वरीयता प्राप्त यासिन शोहदी के हाथों एक तरफा मुकाबले में 4-11, 8-11, 5-11 से करारी हार का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया के मोहम्मद सयाफिक कमाल ने मिस्र के जियाद इब्राहिम को एक मैराथन मुकाबले में मात देकर फाइनल का टिकट कटाया। वहीं टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले जो आज शाम खेले जाने हैं काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं श्रोताओं, जहां फैंस की नजरें पूरी तरह से तन्वी खन्ना पर टिकी होंगी। महिला एकल के फाइनल में तन्वी खन्ना का सामना मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त फरियादा वालिद से होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी ही हमवतन नूर खफागी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। घरेलू कोर्ट और फैंस के समर्थन के चलते तन्वी खन्ना इस मुकाबले में अपना पूरा जोर लगाएंगी, लेकिन फरीदा वालिद की मजबूत चुनौती को देखते हुए ये खिताबी भिड़ंत बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। वहीं पुरुष एकल का फाइनल मिस्र के यासिन शोहदी और मलेशिया के मोहम्मद सयाफिक कमाल के बीच खेला जाएगा, जहां दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और कोर्ट पर उनके बीच एक बेहद आक्रामक और बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
1: और अब फिर से बैडमिंटन, घरेलू बैडमिंटन की ओर चलते हैं। भारतीय बैडमिंटन को दुनिया में सबसे आगे बनाए रखने की एक दूरदर्शी पहल के तहत भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI ने जुलाई 2026 से घरेलू सर्किट में नया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 3x15 स्कोरिंग सिस्टम लागू करना निश्चित किया है। इसकी शुरुआत 7 से 14 जुलाई 2026 तक एनार्कुलम के रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर में होने वाले योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट से होगी। संशोधित प्रारूप के तहत मैच टैली पॉइंट स्कोरिंग के साथ बेस्ट ऑफ थ्री गेम के रूप में ही खेले जाएंगे, लेकिन अब प्रत्येक गेम 21 के बजाय 15 अंकों का होगा। 14 ऑल पर 2 अंकों की बढ़त अनिवार्य होगी और गेम 21 अंकों पर समाप्त होगा, जहां ऑल पर अगला अंक निर्णायक होगा। उम्मीद है कि छोटे प्रारूप से खेल की

तीव्रता बढ़ेगी, गति में तेजी से बदलाव होंगे और सामरिक सटीकता और त्वरित निर्णय लेने का अधिक जोर दिया जाएगा। यह बदलाव सभी घरेलू आयोजनों में लागू होगा जिनमें जोनल चैंपियनशिप, रैंकिंग टूर्नामेंट, नेशनल चैंपियनशिप शामिल है, जिससे पूरे इकोसिस्टम में एक समान बदलाव आएगा। जनवरी 2027 में इसके वैश्विक रोल आउट से पहले इस प्रारूप को लागू करके बीआई का लक्ष्य खिलाड़ियों, कोचों और तकनीकी अधिकारियों को अनुकूलन के लिए आवश्यक समय और प्रतिस्पर्धा अनुभव प्रदान करना है। इस बदलाव की रणनीतिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बीएआई के महासचिव संजय मिश्रा ने कहा, प्रतियोगिता में एकरूपता सुनिश्चित करने, बेहतर तैयारी की सुविधा प्रदान करने और खिलाड़ियों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और सभी हितधारकों को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जनवरी 2027 से प्रस्तावित कार्यान्वयन से पहले नए स्कोरिंग प्रारूप का पूरी तरह से अभ्यस्त बनाने के लिए 3x15 स्कोरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए प्रारूप के तहत मैच की अतिरिक्त प्रक्रियाओं को भी संशोधित किया गया है। पारंपरिक मिड गेम इंटरवल अब तय होगा और जब अग्रणी खिलाड़ी या जोड़ी 8 अंक तक पहुंच जाएगी, साथ ही तीसरे गेम में कोर्ट बदला जाएगा और 60 सेकंड का ब्रेक होगा। खेलों के बीच 120 सेकंड का अंतराल अपरिवर्तित रहेगा, जबकि पिछले गेम का विजेता पहले सर्व करना जारी रखेगा। नई प्रणाली 3x15 को जुलाई 2026 से भारत की घरेलू बैडमिंटन कैलेंडर में समान रूप से लागू किया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा और एथलीट की तैयारी में निरंतरता आएगी। यह प्रारूप सभी जोनल चैंपियनशिप अंडर 13, 15, 17, 19 सीनियर्स और मास्टर्स श्रेणियों में घरेलू रैंकिंग टूर्नामेंट के साथ साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप के हर स्तर पर अंडर 11 से लेकर सीनियर और मास्टर्स प्रतियोगिताओं तक लागू होगा।

0: और अब बात करते हैं फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की साथियों। एक एशियाई क्वालिफायर में अहमदाबाद के वीर सावरकर इंडोर स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी के मुकाबले में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम को कतर के खिलाफ 56-65 से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत बेहद शानदार की थी और हाफ टाइम तक 30 और 22 की एक मजबूत बढ़त बना ली थी, यानी 8 अंकों की बढ़त भारतीय टीम के पास थी, जिसमें भारत के प्रणव प्रिंस और हर्ष डागर ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 13-13 अंक बटोरे। हालांकि दूसरे हाफ में कतर की टीम ने शानदार वापसी की और भारतीय डिफेंस को भेदते हुए तीसरे क्वार्टर में स्कोर के अंतर को कम किया और अंतिम क्वार्टर में 23-12 से पूरी तरह दबदबा बना लिया। कतर की इस जीत के स्टार अब्दुल रहमान साद रहे, जिन्होंने मैच में सबसे ज्यादा 24 अंक हासिल किए। इस हार के साथ ही भारतीय टीम ग्रुप डी में लगातार अपनी 5वीं हार झेलकर क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो गई है।
1: और अब चलते हैं टेबल टेनिस की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स स्मैश 2026 का आयोजन 26 जून से 5 जुलाई तक कैलिफोर्निया में हो रहा है और भारत के कई शीर्ष खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और कुछ ने शानदार जीत दर्ज कर अंतिम 16 तक का सफर तय किया है। पहला दिन यानी कि 26 जून से क्वालिफाइंग से लेकर राउंड 16 तक का सफर रहा और वो भी बहुत ही शानदार सफर रहा। मानव ठक्कर ने शानदार जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया। श्रीजा कुलर ने भी प्रभावी प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। दिया चितले ने महिला एकल में जीत दर्ज की। युगल मुकाबलों में भारत की कई जोड़ियां जीत के साथ अभियान शुरू किया, लेकिन मानव ठक्कर और मानुष शाह की पुरुष जोड़ी ने मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की जोड़ी शुनसुके तोगामी और हिरोतो को हराकर बड़ा उलटफेर किया और वह टूर्नामेंट की सबसे चर्चित जीतों में से रही। भारतीय खिलाड़ियों ने मिश्रित और महिला युगल में भी चुनौतियां पेश की और उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल में इन लोगों ने मानव ठक्कर ने जगह बनाई। श्रीजा कुला दिया चितले के को कड़े मुकाबलों से हार का सामना करना पड़ा उसके बाद और कुछ भारतीय युगल जोड़ियां क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई और पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानुष शाह का अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। और अब बात कर लेते हैं विंबलडन की।
0: और जैसा कि दीपिका जी ने बताया, विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन 2026 के दूसरे दौर के मुकाबलों में ऑल इंग्लैंड क्लब के ग्रास कोर्ट पर कई रोमांचक और उलटफेर से भरे मैच देखने को मिले। पुरुषों के एकल वर्ग में फ्रांसिस टियाफो ने शानदार खेल दिखाते हुए ब्रिटेन के जान चॉन्सकी को 4-6, 6-2, 7-5, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की की। वहीं आर्थर फेरी ने अपने करियर में पहली बार विंबलडन के तीसरे दौर में प्रवेश कर

0: इतिहास रचा। उन्होंने ऑटो वर्टान को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से मात दी। हालांकि स्पेन के जाओ मुनार ने बेहतरीन सर्विस के दम पर ब्रिटेन के जैकब फेयरनली को सीधे सेटों में बाहर कर दिया। महिला एकल वर्ग के दूसरे दौर में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। शेष खिलाड़ियों में कोको गॉफ ने सोलाना सियेरा के खिलाफ बेहद कड़े मुकाबले में 6-3, 3-6, 7-6 से जुझारू जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट कटाया। एक और रोमांचक मैच में बारबोरा क्रेज़्किकोवा ने मीरा एंड्रीवा को 4-6, 7-5, 6-4 से हराकर शानदार वापसी की। इसके अलावा एना कलिंस्काया ने डाइने पेरी को और अमांडा अनेसीमोवा ने सोफिया कैनिन को कड़े टाई ब्रेकर मैचों में मात देकर टूर्नामेंट में अपना सफर जारी रखा, जबकि ब्रिटेन की कैटी स्वान को मेडिसन कीज के हाथों हार कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।
1: और अब बात करते हैं भारत की फुटबॉल विरासत का गौरवशाली प्रतीक डूरंड कप, जो एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तीन सेनाओं की ओर से भारतीय सेना द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट एक सदी से भी ज्यादा समय से भारत के बेहतरीन फुटबॉल टैलेंट को निखारने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ कुछ और भी खास बातें हैं जो हम इस डूरंड कप के बारे में आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये शानदार जो फुटबॉल के मैच होने हैं बहुत ही रोमांचक मैच होने हैं। और रांची चरण की शुरुआत 26 जुलाई से और इम्फाल में 28 जुलाई से, शिलोंग में 31 जुलाई से, गुवाहाटी में 1 अगस्त से होंगे ये मुकाबले। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वां संस्करण है ये, जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी और 5 मेजबान शहर तो होंगे ही, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्वार्टर फाइनल रांची, कोलकाता और शिलोंग में होगा, जबकि सेमीफाइनल कोलकाता और शिलोंग में खेले जाएंगे। कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में आयोजित होने वाले यह संस्करण एक बार फिर डूरंड कप के लगातार बढ़ते राष्ट्र विस्तार को दर्शा रहे हैं। रांची को पहली बार इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। 2019 से डूरंड कप का स्थायी मेजबान बनने के बाद कोलकाता इस बार टूर्नामेंट का प्रमुख केंद्र रहेगा। यहां ग्रुप ए और ग्रुप बी के मुकाबलों के साथ उद्घाटन मैच, 2 क्वार्टर फाइनल, पहले सेमीफाइनल और फाइनल आयोजित किए जाएंगे। ग्रुप ए में रिकॉर्ड 17 बार के चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट्स, 16 बार के विजेता ईस्ट बंगाल एफसी, साउथ यूनाइटेड एफसी और सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स शामिल है। इस ग्रुप का सबसे बड़ा आकर्षण 25 जुलाई जो कि अभी होना है, होने वाला कोलकाता डर्बी होगा, जो भारतीय फुटबॉल की सबसे चर्चित प्रतिद्वंदिताओं में से एक है। ग्रुप चरण का समापन 10 अगस्त को मोहन बागान सुपर जायंट्स और सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स के मुकाबले के साथ होगा। ग्रुप बी में मोहम्मदन एफसी, भारतीय सेना फुटबॉल टीम डूरंड कप में पदार्पण कर रही बागपत एफसी और समलेश्वर सपोर्टिंग शामिल है। यह ग्रुप 26 जुलाई को भारतीय सेना फुटबॉल टीम और समलेश्वरी स्पोर्टिंग के मुकाबले से शुरू होगा, जबकि 12 अगस्त को मोहम्मदन एफसी और भारतीय सेना फुटबॉल टीम के बीच मुकाबले के साथ समाप्त होगा। डूरंड कप के इतिहास में पहली बार मेजबान बने रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप सी के सभी मुकाबले खेले जाएंगे। इस ग्रुप के इंडियन सुपर लीग की टीमें जमशेदपुर एफसी और सपोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम और पहली बार भाग ले रही श्रीलंका सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी शामिल है। इसके अलावा और भी फिक्स्चर्स हैं, वो भी हम आपको बताते चले। शिलोंग में ग्रुप ई के मुकाबले होंगे, जिसमें मेघालय के 3 स्थानीय क्लब अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगे। इंडियन फुटबॉल लीग उपविजेता शिलोंग लॉन्जेस एफसी, लास्टिंग एफसी और मेघालय प्रीमियर लीग चैंपियन नॉर्गे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब के साथ महाराष्ट्र की पहली बार भाग ले रही हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
0: और अभिनव कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal,

0: परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। वित्तमन्त्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रिय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहम् आहूताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक संजालीय तन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेना क्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95.5 संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिड़ला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिड़ला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेष् श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेष् झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तरप्रदेश बिहार आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कनाडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलं आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, 6:30 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए वीनस बहन, हमारा जो भारत देश है एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और निर्वाचन के द्वारा जब हम उन्हें चुनते हैं तो उनकी जवाबदेही होती है कि हर एक विकास कार्य में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी जवाबदेही भी बनती है। और अगर गाँव की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं की विशेष भूमिका होती है जहाँ पर ग्राम सभाओं में गांव के पंजीकृत मतदाताओं की एक सामान्य सभा होती है जिसके जरिए गांव के सभी विकास कार्य को किया जाता है, उस पर चर्चा भी की जाती है। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो जरूरतमंदों और लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाना है उसकी सभी बातें वहां पर आपस में विचार विमर्श के द्वारा साझा की जाती हैं। और गांव के विकास से जुड़े सभी कार्य, चाहे वो किसान से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, सभी का लेखो जोखा बातचीत करके और विकास कार्यों को आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ग्राम पंचायत को पंचायत व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और पंचायत व्यवस्था को सही तरीके से चलाना और निष्पक्ष रूप से फैसले लेना, वो भी सामूहिक रूप से कुछ बड़े बुजुर्ग और एक साथ मिलकर समझदारी से किसी भी फैसले पर पहुंचते हैं और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो युवाओं के लिए हो या किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया को लेके उनके निष्पक्ष फैसले किए जाते हैं ताकि वो आगे जाके भविष्य में उनको बेनिफिट दे और उनके साथ कहीं किसी के साथ में भी अन्याय ना हो।
0: बिल्कुल, राज्यों के पंचायती राज मंत्रीगणों की 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह का संबोधन आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए ये संबोधन।
2: देखिए 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में उसमें कई तरह के प्रावधान हैं। 20% परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट है, 80% पंचायतों को ग्रांट है और 20% तो आज का ये कार्यशाला था कि 16वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जो राज्यों को तैयारी करनी है, जिन राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, कैसे अपने राज्य के पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकें, कैसे अपने राज्य के पंचायतों को सशक्त बना सकें, कैसे अपने पंचायतों के कार्य क्षमता विकसित कर सकें, कैसे अपने पंचायतों के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता स्थापित कर सकें, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। चूँकि इसमें राज्य का विषय है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का जो अनुदान है वो राज्यों का है, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, पंचायतों को हम विकसित बना सकते हैं, पंचायतों को हम सशक्त बना सकते हैं, पंचायतों में हम पारदर्शिता ला सकते हैं। तो इसलिए आज की यह कार्यशाला उसी के आधार पर पंचायतों ने विभिन्न राज्यों के जो माननीय मंत्रीगण थे, 18 राज्य के माननीय मंत्री आए थे और कई राज्यों के जहां के माननीय मंत्री नहीं आ पाए थे वहां के प्रधान सचिव आए थे, उन सभी से चर्चा करके उनको तैयार करना कि पूरे 2031 तक जो 16वें वित्त आयोग का चक्र है उस तक कैसे वो तैयारी करें, कैसे आगे बढ़े, इसी पर आज चर्चा थी और इसी पर कार्यशाला।
0: अभी आप सुन रहे थे राज्यों के पंचायती राज मंत्रीगणों की 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह का संबोधन। और उन्होंने भी कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पंचायती स्तर पर जो लोग होते हैं वो गाँव की समस्याओं से अधिक वाकिफ होते हैं और उन्हें पता होता है कि यहाँ की समस्या और यहाँ के समाधान किस प्रकार हों, क्योंकि कहते ना जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिस क्षेत्र के लोग हैं वो उसका बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है, खासतौर से वित्तीय सहायता बहुत ही जरूरी होती है जब क्रमबद्ध तरीके से तीनों ही, जैसे केंद्र, राज्य और पंचायती राज व्यवस्था मिलकर जब काम करती हैं तो उसको अच्छी तरह से लागू भी किया जा सकता है, उस पर काम भी किया जा सकता है और विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब सुनवाते हैं आपको जयवीर भाटी की आवाज में ये रागनी।

कण मलके खप्पड़ डंडा, हाथ में थे खप्पड़ डंडा। हाँ।

0: अभी आप सुन रहे थे जयवीर भाटी की गाई हुई ये रागिनी।
1: और बात अगर हम करें हमारे कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं कुछ ना कुछ जानकारी मनोरंजन और लोकगीतों के साथ, आपका हम कार्यक्रम में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर आते हैं। तो इसी के तरह से एक बहुत ही खूबसूरत गांव में जो एक पारंपरिक कलाएं और शिल्प मिट्टी का जो खिलौने होते हैं, हस्तशिल्प का जो काम होता है, वो हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। अपने शिल्प में मतलब अगर हम देखें हमारे पुराने समय में जाके तो हर क्षेत्र बहुत ही आत्मनिर्भर रहा है, खास करके ग्राम मतलब गांव में और जो छोटे कस्बों में। वहां पर क्या होता था, वहां पे लोग बैठकर कोई कोई मतलब कुछ भी छोटा सा काम लोगों काम शुरू करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना या खास करके मूर्तियां बनाना वो बहुत ही पसंद आती है, गुड्डे गुड़ियां या छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने, हाथी घोड़ा ये सब बना के वो अपने अपनी संस्कृति को तो दर्शाते ही हैं कि हमारा इतिहास जो सबसे ज़्यादा इसी में दर्शाया जाता है, मिट्टी की हस्तशिल्पकारी में।
0: बिल्कुल, देखिए मिट्टी के साथ साथ कपड़े की बुनाई है, बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प से जुड़े काम हैं जिनको कि अब लोकल फॉर वोकल के जरिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकप्रियता मिल रही है। खास से इसके लिए आयोजन किए जाते हैं जहां पर कि जो हमारे कारीगर होते हैं उनके लिए डिजिटल और राष्ट्रीय बाजार तक उन्हें कैसे उनके सामान को पहुंचाया जाए इसके लिए प्रदर्शनियां भी लगती रहती हैं और बड़े ही अच्छे दामों पर लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं ये अधिक टिकाऊ होती हैं, सुंदर होती हैं और सबसे अच्छी बात है कि पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। और इसमें अगर बच्चों को भी अगर मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए देखते हैं हम कि कार्यशाला आयोजित की जाती हैं, क्योंकि उससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और उनकी एकीकृत जो मतलब कहते हैं ना कि दिमाग को केंद्रित करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उनकी क्षमता भी अधिक बढ़ती है और इस तरीके से अगर अपने हाथ से बना के खेलते हैं तो सीखते भी अधिक हैं, तो बहुत ही लाभकारी हैं हाथ से बनाए हुए ये हस्तशिल्प के सभी तरीके के बनाए हुए सामान, सुंदर भी लगते हैं और अब तो इनको बड़ी मार्केट भी मिल रही है और पसंद भी खूब किया जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, किसी भी वस्तु को किसी भी जैसे हमारे खिलौने हैं या छोटी छोटी चीज़ें जो बनाई जाती हैं मूर्तियाँ, इनको बनाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इस पर बहुत मेहनत और एक भाव वो जो बनाने वाला डालता है इतने प्यार से, उसके अंदर जो छोटी छोटी आँख कान नाक और उसके अंदर जो दर्शाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसमें इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो इसका कोई मोल नहीं है। बस आप हम यही आशा करते हैं कि हम जो आज हमारे जो संस्कृति हमको मिला है ये हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को भी देखने को मिले और ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी देन है और इसका कोई मोल नहीं है। तो इस हस्तशिल्प को और लघु कला को हमेशा आगे बढ़ाने में हम सब भारतीयों का भागीदारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं आपको होशियारी चौहान की आवाज़ में ये रागनी।

0: मेरे मत ना पकड़े केस पड़ जाएंगे भारी। अभी आप सुन रहे थे रागनी होशियारी चौहान की आवाज़ में, और इस रागनी में जो बात की गई थी दो द्रौपदी कह रही है दुशासन और दुर्योधन से कि जो तुमने आज मेरे केस पकड़ के जो मुझे भरी सभा में लाए ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि द्रौपदी ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने अपमान का जब तक बदला नहीं लेगी तब तक वो अपने केश नहीं बांधेगी। और फिर इसी का अंजाम था कि महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ और तब द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई।
1: और प्रियंका बहन, इसी के साथ हम एक खास योजना के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास करती रहती है कि हमारे भारतवासियों में कहीं ना कहीं कुछ उनको लाभप्रद ऐसी कोई योजनाएं उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके। जैसे कि हमारी एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि इतनी फायदेमंद है अगर इसका, क्योंकि एक टर्म प्लान कवरेज करती है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको कहीं से भी न्यूनतम तरीके से भी अगर उनको ऐसी योजनाओं से फायदा मिल सकता है तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसके बारे में जानकारी आपको पोर्टल से भी मिल सकती है और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी मिलती रहती है। इसकी क्या क्या जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब क्या क्या जरूरी है पत्राचार जो चाहिए उसके अंदर, पॉलिसी में प्रवेश लेने के लिए समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रवेश के समय ज्यादा से ज्यादा आयु 50 वर्ष की होती है जो सीमित रखी गई है खासकर, तो इसी को आगे। और भी यही कि पॉलिसी के लाइफ कवरेज आयु ज्यादा से ज्यादा 55 होती है। प्रधानमंत्री बीमा योजना का जो नया नवीनीकरण है उसमें हर वर्ष किया जा सकता है इसको, और ये पूरा कवरेज लेती है कि साल में एक ही बारी जो इस तरह का इस प्लान से आप जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसमें 1 जून से 31 मई तक का एक पूरे साल का आपका टर्म प्लान होता है। जैसे कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम गाड़ी का बीमा कराते हैं, हम अपनी सेहत का भी बीमा कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में, ऐसे ही हमारी लाइफ इंश्योरेंस के रूप में हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो भी नॉमिनी होता है, अगर जो पॉलिसी धारक है अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख तक का वित्तीय कवर इसमें दिया जाता है, और इसमें प्रीमियम भी बहुत ही कम है। इसमें 500 रुपये प्रति वर्ष से भी कम का प्रीमियम आपको भरना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग को बीमा से जोड़ा जाए ताकि कोई भी इस तरीके की समस्या आने पर परिवार को संभलने का मौका मिले और आर्थिक रूप से उन्हें सहायता दी जा सके। तो अगर अभी तक आपने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप इस योजना से जरूर जुड़िए। इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या ऑफलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक खाता होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और फिर बड़े ही आसान तरीके से आप अपने आप को पंजीकृत कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम दर पर। तो जरूर हम उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका लाभ जरूर लेंगे। और अब आपको सुनवाते हैं राजेश कुमार अट्टा की आवाज में ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था रामायण का। इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक

0: भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए, मौसम के अनुसार अपनी सेहत और अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी देख रहे हैं हम कि

0: सा मौसम हो रहा है, कहाँ पे कहीं पे बारिश है, कहीं पे गर्मी है, और पसीने नहीं रुक रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि तो हम ऐसे पेय पदार्थों को अपने खान पान में शामिल करें जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना हो। अगर हम ऐसी एक ड्रिंक की बात करें तो भाई सफ़ेद पेठा जो होता है ना, वो फाइबर से भरपूर होता है और उसको पीने के बाद आपको एनर्जी भी महसूस होगी, साथ साथ आपका पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ होगा। अगर सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं तो इसके लाभ और भी अधिक आपको मिलेंगे। इसमें फाइबर की मात्रा तो होती है, साथ ही साथ इसे कहते हैं कि भाई ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और हानिकारक जो टॉक्सिक होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को हमारे मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ एसिडिटी और अल्सर की समस्या अगर आपको है तो उसमें भी इसके परिणाम बहुत ही बढ़िया देखे गए हैं। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और इसका सेवन करने से इसकी तासीर ठंडी होती है तो हमारे जो शरीर होता है उसमें पेट को हमारे ठंडक मिलती है और हर तरीके से इसे कहते हैं भाई बहुत ही अच्छा इसको ड्रिंक बताया गया है, तो इसका सेवन आप ज़रूर कीजिए। इसमें 80% तक पानी ही होता है, इसके जूस का अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका, क्योंकि जो वैज्ञानिकों के भी तथ्य है वो यह है कि स्वास्थ्य और भोजन के बीच अटूट रिश्ता होता है, लेकिन यह रिश्ता तभी तक ही कायम रह सकता है जब हमें ये पता हो कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, खास करके मौसम के अनुसार, क्योंकि मौसमी सब्जी फल जो भी चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है कि मौसम के अनुसार अगर हम फल सब्जी खाते तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बहुत संतुलित रखता है, हमारे जो छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जो हमको पता नहीं होती है हिडन जो गुप्त बीमारियां होती है उनसे लड़ने की शक्ति देता है। हरी सब्जियां हो गई या फल हो गए, उसका जूस लेना। अब जैसे मौसम थोड़ा मिक्स हो गया है, जैसे प्रियंका बहन ने भी बात करी कि अभी मौसम का थोड़ा सा मिला जुला सा है, कभी गर्मी लग रही है कभी बारिश का जैसा लग रहा है, तो ये तापमान जो है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि इससे हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है।
0: और भाई गाँव की बात करें तो गाँव का तो देसी खाना होता है, दूध दही का खाना, और रात को गर्म दूध पीते हैं, सुबह लस्सी पीते हैं, तो ऐसा खान पान सादा खान पान होता है। तभी तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो इतनी एनर्जी के साथ अपने खेतों में काम करते हैं, और जिस तरह से हमें अपने खान पान का ध्यान रखना होता है वैसे ही जो हमारी फसल है उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कैसे करें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और हमारी लागत भी कम आए, हम ज़रूरत के अनुसार ही अपने उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इस जानकारी के लिए हम एक बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। इसमें जानकारी दे रहे हैं संजय कुलश्रेष्ठ और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, अपनी जमीन से ज्यादा उत्पादन ले सकें इसके लिए आपको कई तरह के प्रबंधन करने पड़ेंगे। अभी खरीफ की फसल की शुरुआत हो चुकी है, कुछ किसान भाई बुआई कर रहे हैं, कुछ भाइयों ने बुआई कर दी है। फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, कार्यकारी निदेशक विपणन है इफ्को में। संजय जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इफ्को किसानों की संस्था है और किसानों के हित में समय समय पर काम करती रहती है और किसानों को जागरूक भी करती है, तो किस तरह का आपका अभियान है जिससे के कम से कम रासायनिक खाद का प्रयोग किसान करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि इफ्को जो हमारी किसानों की संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य हर रूप में किसानों की सेवा करना है। जो विश्व की अग्रणी रासायनिक खाद बनाने की संस्था है वो आज देश के सबसे अच्छे जैव उर्वरक बनाती है, जैव अपघटक बनाती है, नए नए तरह के जैव स्टिमुलेंट्स बनाती है, विदेशों की तकनीक लाकर नए नए प्रकार के आपको वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स दे रही है, और सबसे बड़ी बात इफ्को ने आज हजारों करोड़ रुपया खर्च करके विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी को लाया और अगली पीढ़ी के उर्वरक नैनो फर्टिलाइजर आपके लिए उपलब्ध कराए। इफ्को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपया नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई तकनीक को विकसित करने के लिए किसानों के लिए व्यय करती है। इस वर्ष लगभग अप्रैल माह से हमने देशव्यापी अभियान चला रखा है, किसानों के लिए गांव-गांव पर जाकर हमारी सॉइल टेस्टिंग वैन्स जाती हैं, हमारी स्टैटिक लैब्स हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स, हमारे सारे क्षेत्र अधिकारी इस विषय में

0: कार्यरत हैं और अधिक से अधिक हमारे मृदा के सैंपल लाए जा रहे हैं और हम उनके आधार पर किसान को उसके जो जो पोषक तत्वों की उसकी भूमि में कमी है उसके आधार पर हम उसे सुझाव दे रहे हैं कि अगली फसल में वो कैसे आगे बढ़े। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो आवश्यकता है वो न तो रासायनिक खादों से पूरी हो सकती है अकेले, न उनके बिना पूरी हो सकती है। यानी हमें अपने देश में हर रूप में ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता है, किसान को इस तरह की समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि वो कार्बनिक, अकार्बनिक, जैव और नैनो चारों प्रकार के जो हमारे उर्वरक हैं उनका सही मात्रा में सही समय पर इस प्रकार उपयोग करे कि जो जो पोषक तत्वों की उसकी भूमि में कमी है वो हम पूरी कर सके
1: जी।
0: अब जो एकीकृत जो हमने पोषक तत्व प्रबंधन की बात करी, इसका उद्देश्य यह है कि हम आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कर सकें, उपज पैदा कर सकें और हम अपने भूमि के स्वास्थ्य को भी ऐसा बना के रख सकें कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी हम आवश्यक मात्रा में उत्पादन अपने अनाज का कर सकें। इसके लिए अब हमें करना क्या है, हमें वो सारे चीजों पर ध्यान देना है कि हमें कैसे अपने विगत वर्ष के फसल के अवशेष का हम कैसे प्रबंधन करें। इसके लिए इफको जैसी संस्थाएं जैव अपघटक बनाती हैं और जो बहुत छोटी सी शीशी है जिसमें आधा किलो बेसन, आधा किलो गुड़, 25 किलो पानी में मिला के आप रख दें 5 दिन और उसके बाद उसमें और 150 किलो पानी मिला के एक एकड़ में बिखेर दें, 20-25 दिन में पुरानी फसल का सारा अवशेष जो है हरी खाद में परिवर्तित हो जाएगा और उससे जमीन के भी लाभ होगा और उर्वरक की आवश्यकता भी हमारी कम होगी। इसी तरह से जो दूसरा लाभ है जो हम चाहते हैं कि किसान समझे कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो हमारे जैव उर्वरक हैं, उसमें एनपीके कंसोर्टिया जैसी चीजें हैं जो लगभग 200 रुपए की बोतलें होती हैं सारे संस्थानों की और उससे लगभग 25-25% तीनों तरह की खादें, यूरिया भी, डीएपी भी और पोटाश की खाद भी हमारी बचत होती है। यानी 1,500 की लगभग बचत होती है किसान की अगर वो उसका भूमि शोधन में और बीज शोधन में इसका उपयोग कर सके। इसके बाद बात आती है हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स की। जो इफको ने नई जनरेशन के नैनो फर्टिलाइजर्स निकाले हैं, किसान भाइयों इस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम देश के बारे में सोचें, हमारे देश ने इस वर्ष पहली बार 395 लाख टन से भी ज्यादा यूरिया का उपयोग किया और सरकार की जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही है वो 2.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई, जिसमें से 1,45,000 जैसी सब्सिडी केवल यूरिया पर गई
1: जी।
0: किसान भाई ये समझें कि अगर वो यूरिया का 100 किलो यूज करते हैं उसमें से लगभग 30 किलो ही उनकी उपज बढ़ाने में काम में आता है तो 70 किलो तो वो यूरिया है जिससे आने वाले वर्ष में और कम उत्पादकता होगी क्योंकि उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति और ज्यादा कम होगी। तो इस तरह से अगर 100 में से 70 किलो यूरिया हमारा खराब है जिसका लाभ नहीं मिला तो देखा जाए 1,45,000 करोड़ में से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया उस यूरिया पर गया, सरकार का व्यय हुआ जिसने हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को और ज्यादा कम किया और आने वाले वर्षों में ये होता रहेगा कि हम और ज्यादा यूरिया का उपयोग करना पड़ेगा हमें उतना ही उत्पादन लेने के लिए
1: जी।
0: तो पहली बात तो यह है कि हमें देश में हम पर कोई और तरीका ही नहीं है, हमें यूरिया का जो उपयोग है वो तो निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा क्योंकि 45 किलो का जो बोरा है उसमें से केवल 14-15 किलो किसान के लाभ का है, 30-31 किलो तो वो है जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को हर आने वाले वर्ष में और कम कर रहा है। किसान को लग सकता है ऐसा कि वो तो 270 या 266 रुपए में मिलता है, पर असल बात तो यह है कि सरकार की सब्सिडी मिला लें तो केवल 700 रुपए का ही उसके लाभ का है, 1400 रुपए का तो वो व्यय है सरकार का उस बोरे पे
1: जो बेकार
0: जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को खराब कर रहा है, हमारी भूजल की खराब करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है और तो और हमारे उत्पाद की ये हालत हो गई है कि तरह तरह की बीमारियां केवल ज्यादा नाइट्रोजन के उपयोग से, ज्यादा यूरिया के उपयोग से आ रही है जिनको हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस यूरिया के बैग में 20 किलो से भी ज्यादा नाइट्रोजन है क्योंकि 46% इसमें नाइट्रोजन है और अब मैं अगर नैनो फर्टिलाइजर की बातें इसके सामने लाऊं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देश के लिए एक नया तरह का सुपर फूड है
1: जी।
0: इस नैनो यूरिया की बोतल में अगर किसान भाई समझे तो केवल 100 ग्राम नाइट्रोजन है, पर तकनीक इतनी बड़ी है कि सतही जो इसके आयतन के मुकाबले वो इतना अधिक गुना बढ़ गया है

0: जो इसके अंदर जो कण हैं वो 30 नैनोमीटर के आसपास के साइज के हैं। उसमें जो प्रक्रिया में भाग लेने वाले एटम होते हैं 50% उसकी सरफेस पे होते हैं, जबकि 3000 जब हो जाता है साइज तो 0.5% भी सरफेस पर नहीं रहता। इतनी ज्यादा क्रियाशीलता होने के कारण ये 100 ग्राम नाइट्रोजन है वो 20 किलो से भी ज्यादा नाइट्रोजन जो बोरे में है उसका बराबरी करता है या उससे भी अधिक हमें फायदा देता है। अब आप समझे किसान भाई कि हम कहते हैं कि जब लगभग 85% लीफ हो जाए तब आप इसका स्प्रे करें, तो ये समझ लीजिए कि जो हम टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यूरिया जितना हम डाल रहे हैं या रासायनिक खाद जितना हम कम उपयोग कर पाएंगे तभी हम उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि हर आने वाले वर्ष में हम जितना यूरिया डाल रहे हैं उससे हम टिकाऊ खेती का एकदम विपरीत कर रहे हैं। और जितनी भी बोरियों को हम अपनी नैनो फर्टिलाइजर की बोतल से बदल पाएंगे या जैव उर्वरक और कार्बनिक खादों के उपयोग से जितना उनको कम कर पाएंगे उपयोग में, उतना ही हम अपनी टिकाऊ खेती की तरफ देश को लेके जाएंगे।
1: बिल्कुल संजय जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी इसलिए दी कि आपने उनको ये भी बता दिया कि भाई कितने बोरे में कितना डालें, कितना हमारा उपयोग और कितना हमारा नुकसान जमीन के लिए हो रहा है।
0: अगर किसान भाई सोचे नए रूप में कि बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने खेतों में 20-25 एचपी के ट्रैक्टर चलते देखे होंगे अपने जमाने में
1: जी,
0: और आज हम 45-65 एचपी के ट्रैक्टर चलाते हैं। आप सोचें कि जब वो ट्रैक्टर खेत में चलता है तो हमारी जमीन कितनी दबती है। हमारी जमीन में केवल ऊपर ऊपर से ही हम पोषक तत्व ले पा रहे हैं
1: जी,
0: जमीन इतनी कठोर हो गई है इन रासायनिक खादों के उपयोग से। और सबसे बड़ी बात जो हमने नुकसान उठाया है कि इन सब के कारण जो जीवांश कार्बन है, जो सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, जीवांश कार्बन है, उसकी मात्रा जो 1 से भी अधिक हुआ करती थी प्रतिशत में, वो अब हमारी 0.3 से भी कम रह गई।
1: अच्छा, इतना नीचे आ गई
0: है। किसी प्रदेश में तो 0.1 से 0.2 के आसपास है, राजस्थान उसका उदाहरण है। अब आप सोचें कि जीवांश कार्बन नहीं, यानी जमीन में भुरभुरापन नहीं, जमीन के पानी रोकने की क्षमता कम, और उसके कारण क्योंकि उसमें हमारे छोटे छोटे जीवाश्म नहीं हैं, तो उससे हो ये रहा है कि जो पहले हम केंचुआ सुनते थे किसान भाई, उससे जो जमीन को लाभ होता था वो है ही नहीं। और उसकी वजह से आप कितना भी उर्वरक डालें हमारा उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि किसान भाई पहला जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पहली जो खाद डालते हैं, क्योंकि उस समय तक हमारी पत्तियों का अक्षादन उतना अधिक नहीं होता, तो हम ये चाहते हैं कि पहली जो टॉप ड्रेसिंग करें वो जिस मात्रा में जितनी भी यूरिया डालते हैं उतनी डालें, पर उसके बाद जब पत्तियों का अक्षादन 85% से अधिक हो जाए, बहुत सारी फसलें आप देखिए जिससे हमारी मक्का की फसल है, हमारी कॉटन की फसल है, सब्जियां हैं, जितनी भी इस तरह की फसलें हैं जिनमें पत्तियां ज्यादा हैं, उनके लिए तो ये भरपूर लाभ वाली है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आज एक और मैं बता दूंगा आपको कि इसमें जब आप किसी भी नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे या नैनो डीएपी को मिला के उसमें जब स्प्रे करेंगे तो आप नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा जो मात्रा अधिक मात्रा डालते थे वो आपने कम कर दी, और नाइट्रोजन की मात्रा जब आपने कम करी और वो सीधे सीधे पत्तियों के माध्यम से अंदर चली गई तो इतनी कम मात्रा थी जो सीधे उपयोग में आई, और उससे ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन पड़ रही थी उसकी वजह से पत्तियां सामान्यतः यूरिया डालते ही मोटी हरी और रसदार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कीट पतंगे उन पर आते हैं और कीटनाशकों का भरपूर उपयोग करना पड़ता है। हमारे उत्पाद विदेशों से रिजेक्ट होके आ रहे हैं क्योंकि वो उतना स्प्रे वाली मिर्च कोई विदेश हमारा स्वीकार नहीं कर रहा है हमारे सब्जियों में, हमारे फलों पे
1: जी।
0: तो इससे जो विशेष लाभ होगा, जो कम नाइट्रोजन मिलेगा पौधे को, उससे हमारे कीट पतंगों का भी प्रकोप कम होगा और किसान भाइयों का जो व्यय व्यर्थ होता है अधिक कीटनाशकों के स्प्रे करने में वो भी हमारा कम होगा।
1: और जो किसान भाई उत्पादन कर रहे हैं उसकी विश्व में भी मांग लगातार बढ़ी रहेगी।
0: हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी आप ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इससे एकीकृत पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे, इससे सभी तरह के जब पोषक तत्व होंगे तो हमारा उत्पाद की गुणवत्ता भी बहुत
1: बिल्कुल
0: अलग दिशा में जाएगी। किसान भाइयों का केवल एक ही विषय है जिसपे आज मैं अलग से बोलना चाहता हूँ आपसे कि आप सबके मन में ये है कि यूरिया डालते ही 7 दिन में फसल एकदम हरी हो जाती है, पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसको आप 20वें दिन देखिए और उसी के बगल के किसी खेत में नैनो यूरिया डाला हुआ खेत देखिए कि 20वें दिन क्या होता है। क्योंकि किसान गेहूं वाला है, धान वाला है, वो प्रतिदिन अपने खेत में नहीं जाता, पर जो सब्जी उगाता है, जो कैश क्रॉप करता है, जो कमर्शियल क्रॉप करता है, वो रोज जाता है, उसको परिवर्तन दिखता है। मैं आज विशेष बातें बता दूं कि यूरिया डालने से पहले 7 दिन में 6 दिन में फसल हरी तो ज्यादा हो सकती है, पर वो उस जगह जाता है जिसका कि फूल पे या फल पर लाभ नहीं होता।

0: जी
1: नैनो यूरिया जैसे उत्पाद, नैनो डीएपी जैसे उत्पाद हैं, ये 20 दिन तक धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं और उसी मात्रा में जमीन से भी अन्य उर्वरक के पोषक तत्व आते रहते हैं। यानी ये एक तरह का हर रूप में बैलेंस न्यूट्रिशन की बात होती है, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज की बात होती है, और इसीलिए जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो हमारी अति उत्कृष्ट होती है सामान्यतः जो हमारी सामान्य यूरिया के मुकाबले। और हम दोबारा ये कहना चाहते हैं कि इफको ने जो इस साल अपना एक विशेष उद्देश्य बनाया कि हम भू स्वास्थ्य पर काम करें और किसान की समृद्धि के लिए समर्पित करें, इसी उद्देश्य से हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम अपने क्षेत्रों में, गांवों में, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर कर रहे हैं इस वर्ष।
0: संजय जी, आपने बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को सही बताया किस तरह अपनी जमीन को बचाना है और भाई कम लागत भी आपको कम करनी है जिससे कि आपका उत्पादन बढ़े और पैसा भी अच्छा मिले। तो संजय कुलश्रेष्ठ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी और विषय था फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे संजय कुलश्रेष्ठ से और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी।
3: और भाई उन्होंने भी विशेष रूप से कहा है कि हमें रासायनिक खाद को छोड़कर नैनो फर्टिलाइजर और जैव उर्वरकों की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी खेती को, अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को उसमें सुधार करने के लिए अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और अगर कृषि की बात करें, इस समय खेतों में धान की नर्सरी यदि आपकी 20 से 25 दिन की हो गई है तो तैयार खेत में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 ग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेक्टर की दर से डालें तथा नील हरित शैवाल एक पैकेट एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा होता है ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। इस तरीके से अगर और आपको कोई बीमारी दिख रही है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ आपको याद दिला दें कि कल शनिवार है और शनिवार को आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है 6:30 पर, जो कि लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम होता है जिसमें आप फोन के जरिए अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाते हैं। तो हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने की, फोन नंबरों की और समय की सही जानकारी दी जाएगी। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं उदयपाल की आवाज में ये उपदेश।

तो भाइयों, उदयपाल के गाए हुए इस उपदेश के साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम जी। और कार्यक्रम को आप कैसा पसंद करते हैं, किस तरीके के आपके सुझाव हैं, वो आप हमें प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह कांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ज पर। 7:30 होने को है। अब सुनिए गजल कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे गजल कव्वाली कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने डीडीए सलाहकार परिषद की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास रोडमैप की समीक्षा की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति और श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2026 की आधिकारिक पुस्तिका का भी

0: उच्चन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और आरसी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 60 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अगले 4 वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक, इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर 50,000 रुपए तक और N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सके और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नामक 7 वर्षीय परियोजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर सभी से संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि ये केवल विशेष दिन तक सीमित न रहे, बल्कि सभी की रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर से निकलते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक थैलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली के निर्माण में सहभागी बने। दिल्ली के भागीरथी जल शोधन संयंत्र में आज स्कूली बच्चों ने वाटर ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया को करीब से समझा, साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास के रोडमैप की समीक्षा की गई।
2: बैठक के दौरान आगामी मास्टर प्लान, नागरिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने तथा शहर के लिए नियोजित समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर व्यापक चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने DDA को निर्देश दिए कि वे जमीन के टुकड़ों और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल करके अवैध कब्जों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलजुलकर काम करने, पारदर्शी और तकनीक पर आधारित तरीका ही सबसे जरूरी है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली के लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में आज नव निर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फ्रंट ब्लॉक में 6 बेड का डे केयर सेंटर, 12 कंसल्टिंग रूम, 1 डे केयर रूम और 1 कॉन्फ्रेंस रूम विकसित किए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत सभी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, ऑनलाइन जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सुविधाओं से देश के हजारों नागरिकों को बेहतर और त्वरित उपचार का लाभ मिलेगा।
3: हमने एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, ताकि आपको एक क्लिक में पता चले कि कहाँ ICU बेड खाली है, आप सीधा अपने पेशेंट को वहाँ लेके जा सके।

0: राज्य में सोटो ऑर्गन डोनेशन का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दानदाता और रिसीवर दोनों को कनेक्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ऑर्गन डोनेशन का काम कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
1: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में प्रारंभ की गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SRIR प्रक्रिया को लेकर प्रथम समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली भाजपा महामंत्री और SIR प्रक्रिया प्रमुख योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि दिल्ली में अन्य दलों की तरह ही भाजपा के भी बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग बूथ हैं और इनमें 12,000 से अधिक पर भाजपा के BLA2 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 21 छात्रों को HCL टेक बी नामक निजी कंपनी में अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाएं प्रोग्राम के जरिए रोजगार मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि यह उपलब्धि सभी छात्रों की क्षमता को दर्शाती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत की समग्र शासन की अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के समन्वय की आवश्यकता है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में दक्ष के तीसरे बैच के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: दक्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक वर्षीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जिसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग और लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण से संस्थानों में तालमेल स्थापित होना चाहिए, ताकि 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम शासन प्रणाली तैयार की जा सके। उन्होंने वर्तमान बैच में महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व सराहना करते हुए इसे भारत के बदलते नेतृत्व परिदृश्य का सकारात्मक प्रतिबिंब बताया। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि आज नेतृत्व विकास का दायरा व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने से कहीं अधिक है, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकियों और शासन मॉडल के अनुकूल होने में सक्षम संगठनात्मक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आयोग AI, उभरती प्रौद्योगिकियों और संस्थागत अनुकूल क्षमता जैसे भविष्योन्मुखी विषयों को अपने क्षमता निर्माण ढांचे में एकीकृत कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका नया कार्यकाल इस साल 8 अक्टूबर से अगले 5 वर्षों तक रहेगा। प्रोफेसर सिंह ने वर्ष 2021 में कुलपति का पद संभाला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों ही श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीकरण नहीं मिल जाता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की इस तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमरनाथ यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट

लाइफ इन मेट्रो फिल्म से आपने सुना इस गीत को, आवाज सोहम की। सुन रहे हैं आप गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीतों में कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जहां वादा बहुत सारा किया जाता है और उसे निभाया भी जाता है। ये गीतों में ही तो बताया जा रहा है और ये गीत ही तो है जो हमें भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। वाकई में वादा करना और फिर उसे निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और गीतों में जब ये बोल आ जाते हैं तो शब्द पे ज्यादा जोर आता है, यानी कि मन में वही बात चलती है जो गीतों के बोल में होते हैं। और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मन को झकझोर देते हैं, उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

वाकई में जब वादा कर लेते हैं तब लगता है कि उस वादे पर चलते रहे, लेकिन कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जहां वादा कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है। लेकिन उससे क्या होता है, कई बार वादे तोड़ने से हम बच भी जाते हैं क्योंकि इशारों में ही कुछ बातें हो जाती हैं। गीतों का ये सिलसिला चल रहा है, आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

और जब गानों का सिलसिला चलता है या बातों का सिलसिला चलता है तो कोई एक कहता है और एक सुनता है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही अपने जज्बात एक साथ ही बोलने लग जाते हैं, तो क्या होता है? फिर तो यही होता है कि कौन कहेगा और कौन सुनेगा। तब ये कह सकते हैं कि कभी मैं कहूं और कभी तुम कहो।

तारीफ। तो गीत में इन शब्दों को कैसे पिरोया गया ये गीत बताता है, और तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। और जब कोई खुद से कहे कि बता दो ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या खूबी है, तो फिर गीत कुछ इस तरीके से बन गए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

और वाकई में जब तारीफ का वक्त चलता है तो लगता है ये चलता ही रहे, क्योंकि तारीफ सुनने वालों को सबसे ज्यादा इस बात का पता होता है कि जो तारीफ कर रहा है वो तो अपना ही है, और जब अपने तारीफ करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो मोहब्बत में कई ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर इंसान अपने आप को सबसे महफूज समझता है, और फिर ये दुनिया मोहब्बत पर ही टिकी है। यानी कि अगर इस दुनिया में प्यार मोहब्बत ना हो तो जीवन कैसा ही होगा। तो फिर ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी चलती रहे, यही कामना है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत मालिका का आखिरी मुकाम आ गया है, यानी कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आखिरी नगमा आपके लिए, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा

0: तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।

0: पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के

0: के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Maharashtra today affecting normal life and disrupting road connectivity in many districts. More from our Mumbai correspondent.
1: Today, several parts of Maharashtra received rainfall, with coastal areas seeing highest amount of rains. Water level rose in rivers of districts of Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg and also in Kolhapur. According to IMD, rainfall is expected to intensify in the state from tomorrow till 7th July. Heavy to very heavy rain is likely at several places, while isolated areas over Konkan and the adjoining Ghat regions of Maharashtra may receive extremely heavy rain. Thunderstorms are also likely over parts of Madhya Maharashtra, Marathwada and Vidarbha. The IMD has advised fishermen not to venture into the sea till July 7th due to winds and rough sea conditions. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
0: On to sports. In the FIFA World Cup, Australia will take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. In other round of 32 matches, Argentina will face Cabo Verde at Miami Gardens, while Colombia will clash with Ghana at Kansas City Stadium tomorrow morning. In the Wimbledon Tennis Championships, American Jessica Pegula and Naomi Osaka of Japan have reached the round of 16 in women's singles. Osaka defeated Daria Kasatkina 6-1, 6-3 in just 65 minutes in round of 32 match. Jessica dominated Spain's Buzas Maniero in a 6-1, 6-3 victory. In men's singles, third round of matches, world number one Jannik Sinner is currently facing US player Jensen Brooksby, while Daniil Medvedev is taking on Jan Lennard Struff of Germany. In another third round fixture, Serbian Novak Djokovic is taking on Arthur Rinkonesh of France. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today, extending their rising streak for the third straight session. The Sensex rose 262 points to close at 77,764. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government says Indus Waters Treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council clears procurement proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकिफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफिका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی

0: विंग बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट की खरीदारी की मंजूरी दी गई है जो भारतीय फजाइया के लिए मुस्तकिल इंटेलिजेंस निगरानी मवासलात और रिमोट सेंसिंग के काम अंजाम देगा। आकाशवाणी दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेटा की एक टीम ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत के हुक्काम के साथ मीटिंग की। ये मीटिंग भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम्स फीचर के रोल आउट के मामले पर उन्हें समन नोटिस भेजने के बाद हुई। जराय ने बताया कि वजारत के हुक्काम ने इस फीचर से मुतालिक सरकार की तशवीश के बारे में उन्हें आगाह किया। जराय ने मजीद कहा कि यूजर नेम्स फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने के लिए वक्त की हद 3 दिन दी गई है, इसलिए मेटा मुकर्रा वक्त के मुताबिक अपना हतमी जवाब पेश करेगा। इसी दौरान जराय ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णो ने वजारत के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इंस्टाग्राम के उन एड्स के मामले पर मेटा को समन भेजें जिनमें भारत में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के मवाद को फरोग दिया जा रहा है। वजारत इस मामले पर मेटा से वजाहत तलब करेगी। हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से बीएटी, बीएमएस, इपोकायन और लॉसिजी एप्स हटाने के अहकाम जारी किए हैं। ये इकदाम सिक्योरिटी के मद्देनजर किया गया है। ये कदम इन इल्जामात के बाद उठाया गया है कि इन एप्लीकेशंस को ई रिक्शा समेत ई व्हीकल्स को रिमोट के जरिए नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस तहकीकती कौंसिल बीएआरसी को न्यूज और गैर न्यूज दोनों तरह के प्रोग्रामों में उस वक्त तक टेलीविजन रेटिंग्स की इशात को रोकने की हिदायत दी है जब तक कि टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत उसके लाइसेंस की तजदीद नहीं हो जाती। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियू ने आज कोहिमा में खेलों के बुनियादी ढांचे के 16 प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इनमें खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत 4 और रियासती फंड से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आला रियू ने सोशल मीडिया पर कहा कि रियासती हुकूमत ने मयारी बुनियादी ढांचा तैयार करके और आलमी मयार की तरबियती सहूलियात फराहम करके खेलों के शोबे को तब्दील करने की खातिर एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की है जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद मिलेगी और नागालैंड और मुल्क का नाम रोशन होगा। पंचायत राज की वजारत ने 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: अमली अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इन्फरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। ये फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है।

जिनसे कम से कम 2000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि आदादोशुमार नामुकम्मल हैं और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुबतला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीफ में रूसी हमलों से होने वाले नुकसान की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बम्बारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism.
5: India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसमें आज आपने सुने राजस्थानी गीत रामकृष्ण वर्मा जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम राग रंजन, जो कि है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें आज हम सुनेंगे राग यमन में सितार वादन। कलाकार हैं इंद्राणी चक्रवर्ती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आपने सुना राग यमन। सितार वादन में कलाकार थी श्रीमती इंद्राणी चक्रवर्ती। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर

0: होगी।
1: प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो बी विजिटिंग।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश और मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जिसमें आप भेजते हैं हमें ईमेल्स और हम आपके पढ़ते हैं नाम, आपकी पूरी करते हैं फरमाइशें। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें ईमेल्स भेजनी है और उसमें लिख देनी है अपनी फरमाइश और अपना नाम अपने पते के साथ, मतलब जहां से आप भेज रहे हैं। और हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता दूं, ipradiodelhi@gmail.com। इस पर आपको अपने ईमेल्स भेज देने हैं और हम आपके ईमेल्स अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये पहला गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दिल तेरा दीवाना से और आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की। और जी हाँ, आप भी हमारे रिक्शे पर सवार हो चुके हैं संगीत के सफर पर जाने के लिए, आपकी फरमाइशों के सफर पर जाने के लिए। लेकिन आगे चलने से पहले हम आपके नाम पढ़ दें, अपने श्रोताओं के नाम शामिल कर लें अपने कार्यक्रम में, ताकि हमें पता चले कि कितने हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। ये पहला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, आया है मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार

सागर अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह, ये सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ में है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन जुबैर अली खान जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ हम पहुंच रहे हैं जो कि आया है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुक हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ की तरफ से हमारे पास मैसेज आया है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ पहुंचते हैं जो कि आया है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और विमला अनेजा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह भी शामिल हो चुके हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अगले गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म सफर से, आवाज थी मुकेश जी की। और इसी के साथ चलते हैं अपने श्रोताओं की तरफ, जिसमें सबसे पहला मैसेज आया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा जी का, जो कि हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लासिक रेडियो श्रोता संघ राजेश कुमार मेहरा, नंदकिशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य एवं समस्त ग्रामवासी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम बकानी खुर्द, पोस्ट आंवली कला, भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब

और लड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है गांव फ्रांसी हिसार से। राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ में है प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता जी का, साथ में है नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, सदर बाजार कुरावली से हमारे पास मैसेज आया है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत कुमार वर्मा का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ताज मोहम्मद अंसारी जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, साथ में है गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे पास मैसेज भेजते हैं मेरठ कैंट से, आपका स्वागत है और शुक्रिया लगातार हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र मेघा, नंदिनी हर्षिता, ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी हमें शामिल कीजिए अपने कार्यक्रम में, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और आपके पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म बरसात की रात से, आवाज थी मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और कोरस की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रेडियो की आवाज़ ग्रुप मधुबनी बिहार से हमारे पास मैसेज आया है एके झा जी का, शेख अब्दुल्ला बख्श जी का और दुर्गा प्रसाद सैनी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ पहुंचते हैं जो कि हमारे पास आया है। सुशांत प्रिया झा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर,

सिंह, हितेश और बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, कनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, पृथव सिंह का। आप सभी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत भी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। बाईपास मेरठ से, गाँव शोभापुर से दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़ जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है पोटिया कला दुर्ग से, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे आपके नाम और भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये आपकी फरमाइश का प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दो रास्ते से और आवाज थी मोहम्मद रफी जी की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश और मैं हूँ आपकी सखी रचना अग्निहोत्री। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवदे शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे जी का। खंडवा से श्यामाबाई रायकवार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से आया है अगला मैसेज सिद्धार्थ गोंडाने जी, अर्चना गोंडाने और प्रणय प्रसिद्धि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और साथ में है पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साई राज सपकाल और विशाल सपकाल हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे जी का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है खुशी रेडियो श्रोता संघ की तरफ से फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र, एड नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजे जी किसी भी गीत पर शामिल करें, गाजियाबाद से शीशपाल अकेला, हम आपको अकेला नहीं रहने देंगे, हमने आपका कार्यक्रम में नाम शामिल कर लिया है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, सफर चाहे रिक्शे का हो या लग्जरी गाड़ी का, सुहाना तभी बनता है जब हम सफर दिलों दिमाग से पूरी तरह आपके साथ हो। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम सफर मिलना भाग्य है लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जैसा हम सफर मिलना परम सौभाग्य की बात है। ये लिखा है सुनील कुमार गुंद, सुचिता नयनीश गुंद, संगरूर पंजाब से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत प्यारी बातें लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ पहुंचते हैं, जो कि आया है बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया के साथ स्वागत। अगला मैसेज, अस्तुपुरा मऊ जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। गाँव नथाना पंजाब से

जिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना अग्निहोत्री जी, काफी दिनों बाद फिल्म बरसात की कव्वाली सुनने को मिली, दिल बाग बाग हो गया जी। बरहाल आप शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक और मधु नायक जी का मैसेज हमारे पास आया है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। अगला मैसेज हमारे पास आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ पहुंचते हैं, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और शीशपाल अकेला जी को हम अकेला कतई नहीं रहने देंगे, या यार के साथ कोई भी अकेला नहीं रह सकता। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ हमारे सभी श्रोताओं के प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ जो मैसेजेस आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज मैं लेने वाली हूँ मानेवाड़ा रोड नागपुर, देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ।

की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नासिर शेख भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है सुनील कुमार गुंद, सुचिता नयनीश गुंद, संगरूर पंजाब से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है मानेवाड़ा रोड नागपुर, देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत, अंकिता भटकर का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा मेल नजरअंदाज ना करें, शामिल करें, इसी फरमाइश के साथ नासिर शेख जी का हमारे पास मैसेज शामिल हो चुका है और हमने आपका कतई मेल नजरअंदाज नहीं किया। इसके साथ ही अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है हमारे पास सुदर्शन मुखी जी का। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, आपका बहुत बहुत स्वागत है लगातार कार्यक्रम में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ। इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि आया है ग्राम जखणन, जखण गांव, अहमदनगर महाराष्ट्र से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ। फिजाएं बदलेंगी, मौसम बदलेंगे, वक्त के साथ कई चेहरे बदलेंगे, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर दौर में दिल की धड़कनों में बस जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

फिल्म उजाला से आवाजें लता और मन्ना डे जी की हैं। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश को यहीं पर समेटने की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 12 बजने को है, अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे। अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं। India's
2: development assistance. बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से

अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैड बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या खनकती हुई आवाज, बिना म्यूजिक के आवाज, वाकई में क्या खूबसूरत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं साधना सरगम के बारे में, जिनका असली नाम साधना पुरुषोत्तम घाणेकर है। बचपन से सिंगर बनने का सपना साधना ने 4 साल की उम्र में देख लिया था और फिर गायकी भी शुरू कर दी थी 4 साल की ही उम्र में। शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, उससे सबसे पहले अपनी माँ से तालीम हासिल की थी, क्योंकि इनकी माँ भी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। उनके गुरु पंडित जसराज थे, उन्हें बहुत अच्छी तालीम दी उन्होंने। अपने घर पर संगीत की प्रेरणा मिली, घर में संगीत का माहौल था। कारण यही है कि साधना सरगम ने अपने जीवन में संगीत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अपने जीवन में उन्होंने संगीत को ही सब कुछ माना और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई।

संगीत जगत में ऐसे कई स्वरों के साधक हुए जिनने उन्हें साधना सरगम के गीत संगीत के रूप में देखा उन्होंने, और उनके सामने भी साधना सरगम बहुत चमकी, कभी भी पुरानी नहीं हुई। ऐसा ही संगीत की साधक है साधना सरगम। प्लेबैक सिंगर साधना सरगम का नाम भारतीय फिल्म संगीत में एक खास जगह रखता है। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के दिल जीते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में साधना सरगम ने अपने संगीत सफर नाम के पीछे की कहानी बताई। कहा कि गुरुओं की प्रेरणा स्रोतों और शुरुआती चुनौतियों के बारे में खुलकर मैं आज आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि उनका नाम साधना सरगम एक संयोग से नहीं बल्कि माता पिता की दूरदर्शिता और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के सुझाव से बना। माता पिता ने साधना नाम इसलिए रखा ताकि मुझे जीवन भर याद रहे कि संगीत की साधना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब मैं कल्याण जी आनंद जी के पास शिमला प्रोग्राम के लिए गई तो उन्होंने कहा कि साधना घाणेकर नाम अच्छा है लेकिन म्यूजिकल नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरगम जोड़ लें। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। तब से फिल्मों और हर जगह मेरा नाम साधना सरगम ही रहा। बहुत खूब। देखिए, संगीत में डूबा हुआ इंसान, और जब किसी अनुभवी ने सामने से जैसे ही कहा कि नाम बदल लो, ऐसे रख लो, यही कहते हैं कलाकार। एक कलाकार दूसरे कलाकार को समझ सकता है और उनकी सुनता है, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत देता है, उनकी इज्जत करता है। वो सारे गुण साधना सरगम में थे, और शायद एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार होता है। यही कारण है कि साधना सरगम बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई।

साधना सरगम के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनकी पहली रिकॉर्डिंग महज 5 साल की उम्र में ही हो गई थी। वो इतनी छोटी थी कि अपने पहले रिकॉर्डिंग में अपनी गुड़िया को साथ रखने की जिद करने लग गई थी और फिर उन्हें साथ लेकर ही रिकॉर्डिंग किया था। वसंत देसाई के साथ पहली रिकॉर्डिंग जब हुई तब मराठी कविता पर आधारित एक गीत था जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने की। लेकिन अगर हिंदी फिल्म की बात की जाए तो गुड्डी के गाने हमको मन की शक्ति देना के बारे में भी बात की, क्योंकि यही गाना उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को सुनाकर उन्होंने उनसे पहला मौका पाया था। कल्याण श्याम जी वैसे तो पहले से ही जानते थे कि साधना सरगम में हुनर है, क्योंकि उन्होंने उन्हें साधना सरगम को 10 से 11 साल तक अपने संगीत की शिक्षा दी थी और उनके प्रिय शिष्या में से एक रही साधना सरगम, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी लय, उनके सुरों का जादू, सब कुछ जैसे वो उनमें ही डूब जाती हैं। और यही एक कारण है कि कल्याण जी चाहते थे कि वो एक अच्छी गायिका के रूप में साबित हो और अपने गुरु की ये कल्पना, अपने गुरु की ये बात उन्होंने साबित कर दी और 90 के दशक में खूब नाम कमाया।

अपने वक्त का हिट गाना। साधना सरगम के बारे में बात कर रहे हैं हम, सुरों का सफरनामा। आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। साधना सरगम की प्रेरणा की बात अगर करें तो साधना सरगम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी प्रेरणा स्रोत हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी। उन्होंने कहा इनकी आवाज़ सुनकर लगता है कि गाना कितनी ऊंचाइयां छू सकती है। लता ने कहा था कि सुर सही जगह पर लगाना ही एक्सप्रेशन है। मैं उनके गानों को बार बार सुनती हूँ और उनसे सीखती हूँ। चाहे मैं कितना भी आगे क्यों ना चली जाऊँ, लेकिन मैंने सीखना कभी बंद नहीं किया। आज भी मैं अपने प्रेरणादायक जो भी कलाकार हैं, मैं उन्हें सुनती हूँ, उनके एक्सप्रेशन समझती हूँ और अपने गानों में वही एक्सप्रेशन ढालने की कोशिश करती हूँ। वाकई में इस कलाकार ने तो साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती है। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में एक और गीत।

जैसे कहते हैं ना कि अभी हमने बात की कि इन्होंने तालीम हासिल करना कभी भी नहीं छोड़ा। मराठी परिवार से होने के बावजूद हिंदी और उर्दू के उच्चारण कमाल की थी। क्यों थी? क्योंकि इन्होंने इसके उच्चारण के लिए, इसे सही करने के लिए उन्होंने मौलवी सैयद अहमद सैयद से उर्दू पढ़ी लिखी। इससे फिल्म कलिंगा जैसे प्रोजेक्ट्स में दिलीप कुमार के सामने गाने का आत्मविश्वास मिला। साधना सरगम ने अपने संगीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने हर एक क्षेत्र में तालीम हासिल कर ली थी जिससे कि कहीं भी उन्हें कम ना आका जाए। साधना सरगम ने कहा कि उनके करियर में बड़ी परेशानियां नहीं आई क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलता रहा, लेकिन वो खुद से ही असंतुष्ट रहती थी। क्यों? क्योंकि वो जितनी तेजी से प्रोग्रेस करना चाहिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उन्हें लगता था उन्हें और आगे जाना चाहिए। उनका लक्ष्य उनका गाना सुनकर लोग सुकून महसूस करें, तनाव को भूल जाए। हालांकि देखा जाए तो उनके गीत को जो भी हम लोगों ने सुना उसे सुनने के बाद ऐसा ही तो होता है, सुकून महसूस, तनाव भूल जाते हैं हम। आवाज में जादू। लेकिन साधना सरगम ने अभी भी अपने आप को कम ही आका। एक बात तो सही है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने हर एक मुकाम में सोचे कि हम परफेक्ट हो चुके हैं तो वो और आगे नहीं बढ़ सकता। एक कमी अपनी चीज़ों में नज़र आती रहे तो आगे बढ़ने की तलब और बढ़ जाती है। साधना सरगम ने अपने साथ यही किया, अपने आप को कम आंकती थी और आगे बढ़ने के लिए सारे जद्दोजहद करती थी। हर तरीके से बस उन्हें संगीत में डूब जाना था।

साधना सरगम ने तकरीबन 17 अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज़ बिखेरी, अपने सुरों से उनके गीतों को संवारा। इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड, 4 गुजरात स्टेट फिल्म अवार्ड, साथ ही साथ इन्होंने उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड भी हासिल किए। इन्होंने 15,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स को गाए और 36 रीजनल लैंग्वेजेस में। कहते हैं कि इतना टैलेंटेड पर्सन अगर हो और फिर भी अगर वो सोचे कि मैंने कम किया है, मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंची हूँ, तो आप सोचिए कितनी बड़ी कलाकार होंगी। हालांकि साधना सरगम ने गीतों पर अब कम ध्यान देने लगा है। ये कहती हैं कि मैं अच्छे सिंगर से ज़्यादा अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ और संगीत के ज़रिए दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि वो आज भी रोज़ रियाज करती हैं और संगीत की साधना को कभी

कम नहीं होने देती। तो श्रोताओं, आज आपने साधना सरगम के बारे में, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में सुना। कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एक आखिरी नगमा साधना सरगम के स्वर में आपके लिए। मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आपने आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत साधना संगम के बारे में सुना। आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 से।

0: एक बजने को है, अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट BMS इपॉक IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर

पुराने गीत सुन रहे हैं गोल्डन एरा की फिल्म संगीत आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। अभी आपने जिस गीत को सुना फिल्म दास्तान म्यूजिक से सुरैया के स्वर में, गीतों का एक पिटारा, पुराने जमानों के गीतों के एक पिटारा जो

गीता दत्त के स्वर में आपने फिल्म बाजी से सुना इस गीत को। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और इसे अगर सही से सुना जाए तो इसके बीच के बोल भी बहुत खूबसूरत हैं। फिलहाल अग्नि गाने की ओर चलते हैं।

शमशाद बेगम की स्वर में आपने इस गीत को सुना, फिल्म भाई बहन से। गीतों का सिलसिला जारी है, आप सुन रहे हैं और जुड़े हैं AIR यानी कि आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 से। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। श्रोताओं, पुराने गीतों का सफर चल रहा है, यह शुरू का सफरनामा। सुनहरे गीत, गोल्डन एरा के गीत हैं, तो गोल्डन एरा के गीत में अगर हम शमशाद बेगम को सुनते हैं तो फिर हम गीता दत्त को भी सुनते हैं और साथ ही साथ लता मंगेशकर को कैसे भूल सकते हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने बाबुल फिल्म से ये गीत सुना। गीतों का सिलसिला चला जा रहा है अनवरत लगातार, और गीत जब सुनहरे हो तो उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। जी हाँ, पुराने गीतों के शब्द और उसके जो लिरिक्स हैं और गाने का जो तरीका है और जो धुन है, क्या क्या गिनवाए, सब कुछ अत्यधिक खूबसूरत, सुनहरे। शायद यही कारण है वो सुनहरे गीत आज भी हमारे मनों में, हमारे दिलों में यूं ही ताज़ा और सुनहरे हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना बेकसूर फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर हो या शमशाद बेगम हो या गीता दत्त हो या फिर मुकेश हो या फिर मोहम्मद रफ़ी, उस जमाने के ये सारे हिट सिंगर हैं जो आज भी हिट हैं हमारे दिलों में। आज भी राज इनका ही चलता है गीतों के मामले में। कितना भी गीत आप क्यों ना सुन लें, लेकिन सुनहरे गीत, पुराने गीत जब तक कानों में नहीं पहुंचते, कान अधूरा सा फील करता है, अधूरा सा महसूस करता है। तो आइए सुनहरे गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

अरुण कुमार के स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म मशाल से। श्रोताओं, अरुण कुमार नाम हमने या आपने कभी ही शायद सुना होगा, लेकिन गीतों को जब उन्होंने गुनगुनाया तो गीत खूबसूरत लगे। तभी तो उसे कहते हैं कि गोल्डन एरा के गीत गाना बहुत कम समय में उसे सीखना या उसके सुर अलापना सबके बस का नहीं है। गीतों के सफर को चलिए जारी रखते हैं और अगला गीत सुनते हैं।

फिल्म दीवाना से मुकेश की आवाज़ में आपने इस गीत को सुना। गीतों का सिलसिला चलिए आगे बढ़ाते हैं। और सुनहरे गीतों में कुछ गायक ऐसे थे जो लगातार छाए थे उस जमाने में। उनमें से सबसे पहला नाम आता है लता मंगेशकर का।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने फिल्म मल्हार से इस गीत को सुना। सुन रहे हैं आप सुनहरे गीत गोल्डन एरा के फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

कौन सा गीत कैसे साजेगा, कैसे खूबसूरत बन सकेगा। उन्हीं कलाकारों में से एक लता मंगेशकर और दूसरी मोहम्मद रफ़ी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये गीत।

लता मंगेशकर और चितालकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को फिल्म अलबेला से। भोली सूरत दिल के खूटे, वक्त के गीत लाजवाब होते थे। हर एक शब्दों के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में बताया गया पुराने गीतों में, तभी सुनहरे गीत आज भी हम पसंद करते हैं। गीतों का सिलसिला जब चलता है तो उसे रोकना थामना उससे बढ़िया है कि उसे आगे बढ़ाना। जी हाँ, गीतों का सिलसिला कुछ यूं ही लेकर आता है मनों को, आपके दिलों को तरोताज़ा करने। सुनते हैं अगला गीत, सुनहरे गीत।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना इस गीत को, सदाबहार स्वर, हर एक गीतों में ढलने वाला स्वर, चाहे वो पुराने गीत हो या नए गीत हो, हर गीतों में लता मंगेशकर ने अपना जादू, अपने सुरों का जादू बिखेरा। आइए सुनते हैं गीत सुनहरे का अगला गीत।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

फिल्म आह से आपने सुने इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था

0: सुनहरे गीत से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस, इपॉक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार

0: 20 minutes. Egypt took the lead in the first half as Imam Ashour scored in the 13th minute. And that is the end of this news bulletin.
1: आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल से। 2:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम गीत बहार का, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। जी हाँ, इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। आइए श्रोताओं, सुनते हैं नॉन स्टॉप गीत।

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है
1: पर तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली

0: 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशूर ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। द The government has reiterated that the Indus Waters Treaty, IWT, remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, said India's position

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराज।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे उषा विजय कुमार की प्रस्तुति, राग है चारुकेशी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आपने उषा विजय कुमार द्वारा घोटू वाद्यम पर बजाया राग चारू केशी सुना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे बद्ध पद्मनासन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का। पांच बजकर 30 मिनट पर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का आनंद लेंगे, जिसमें आज के कलाकार हैं राधिका मोहन मोइत्रा, जो सरोद पर हमीरी बिलावल राग बजाएंगे। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05। 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन, जबकि 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का। 6:55 पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जबकि 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अब सुबह के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे।

0: 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट करने के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakhs passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Mr. Modi will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Tisza River Comprehensive

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या

फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर पांच बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी एक मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। पांच बार सांस लेने के बाद
आप इस

मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आपने बद्ध पद्मासन के बारे में जाना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम स्वर